0: ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 5:59 ਅਤੇ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ। 6:05 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
2: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक

0: स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन

0: चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन नवीन माफ कीजिएगा, इसे एक बार फिर सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's unified payments interface, UPI, is the undisputed champion of the success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
2: Bharat ki fintech story adbhut rahi hai aur iska ek bada champion hai हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, Prime Minister praised UPI as ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Mr. Modi said it is because of this impact that French President Emmanuel Macron said that UPI is not just a tech story, it is a civilizational story. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library, PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness and enhance public engagement. PMML Chairperson Nipendra Mishra presided over the inauguration ceremony. Speaking on the occasion, PMML Director Ashwini Lohani said the Nehru Planetarium has emerged as one of the leading planetariums in the country, equipped with state-of-the-art facilities to promote scientific temper and inspire curiosity among students, youth and the public. The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at Rudraksh Convention Centre in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. The campaign will be conducted throughout the month of September in Anganwadi centres, schools, panchayats and homes across the country with community participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Anganwadis, Our Responsibility. Uttar Pradesh government has enhanced the honorarium for Anganwadi workers and helpers. State government has issued an order.

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 9 सितंबर दिन बुधवार नु शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अखर।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: दर्शकों खबरदार, जे ब्रेकिंग न्यूज बनन तो बचना है, तब पैसे भेजदे समय नाम अते रकम हमेशा दोबारा चेक करो।
3: RBI कहंदा है किसे नु भी पेमेंट करदे समय थोड़ा ध्यान नाल।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
4: दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है सर्जरी सवेर ते, जंदे जंदे तुहाडी नजर कर दिए अज दियां न्यूज़ हेडलाइनस नूं जिहड़ियां वख वख अखबारां दे विच सुरखियां बणियां। जागरण सिटी बठिंडा मानसा दे पेज की गल करिए, सस्ता पनीर या लोगों की सेहत से समझौता, शहर में 350 और गांवों में 260 रुपए किलो तक भाव, दूध व उत्पादन लागत के बीच पनीर इतना सस्ता कैसे, 2 मिनट में हीरोइन डिलीवरी वाला वीडियो वायरल, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, 20 पुलिस टीमों ने 220 जवानों के साथ संगत मंडी में ली तलाशी, इस दौरान कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। वायरल वीडियो के बाद बठिंडा पुलिस ने एक दंपत्ति के खिलाफ नशा तस्करी का मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से लगभग 3 ग्राम हेरोइन बरामद करने की जानकारी दी। और दोस्तों दैनिक जागरण के मुख्य पन्ने ते है, हर चौराहे पर मिलेंगे झूठ की गूंज से युवाओं को वरगलाने वाले, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री का। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने नाराज फूफा का जिक्र कर विपक्ष को घेरा और ये बात कही। मैन्युफैक्चरिंग की नई कहानी लिख रहा भारत, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाएंगे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, पंजाब दे नाल जुड़ी खबर है। सरपंच समेत 5 गिरफ्तार, मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से तलब की रिपोर्ट, गुलजार आत्महत्या केस, भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, लाशों पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, ये बोलना है बलतेज पन्नू का जो मीडिया डायरेक्टर हैं पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री के। और इसके अलावा पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी दूर करने के लिए सक्रिय हुए पायलट, प्रदेश की कमान संभालने के बाद राहुल व प्रियंका से की भेंट, राज्य के संगठन तथा चुनावी रणनीति के मुद्दे पर की चर्चा, राजा वडिंग

0: बाद भाजपा भी मिले नए प्रदेश प्रभारी से। पंजाबी ट्रिब्यून की गल करिए ट्रिब्यून ने प्रमुखता नाल छापी है जी मेन पेज से मुख पन्ने ते खबर मुलाजमान की हड़ताल कारण दफ्तरी काम ठप्प मुलाजमान वालों 11 तक कलम छोड़ हड़ताल करन दा फैसला मुलाजमान कम ते परतन की अपील की है जी। आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान अते कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब सरकार वालों कम नहीं तां तनखा नहीं दी नीति लागू अधिकारियां अते मुलाजमां च गलबात बेसिट्टा रही। तो दोस्तों पंजाबी ट्रिब्यून दी पेज ते जिहड़ी है वह अगली खबर आ प्रदर्शन तो बाद आईफल टावर बंद हिंदू जथेबंदियों के दौरे दौरान महिला मुलाजमान हटाने का मामला पखिया कीरतपुर साहब नंगल कौमी शाहरा प्रोजैक्ट च लागत बनी अड़िका DPR विच अनुमानित लागत 2700 करोड़ दसी केंद्रीय मंत्रालय ने लागत घटाने लई कहा। इस तरह दोस्तों जांदे जांदे तुहाडे रूबरू करते हैं विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज भारत ने 2 सोने 2 चांदी ते 1 कांसी समेत 5 तमगे जित गए ते ए सी साडा अज दा प्रोग्राम सजरी सवेर FM बैंड 101.1 MHz ते आकाशवाणी दा ये बठिंडा केंद्र है। हुण तों कुछ पलां बाद यानी कि सवेरे 8 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन समाचार प्रभात 8:15 ते अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन मॉर्निंग न्यूज़ पंजाबी विच खबरां तुसी सुनोगे आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों सवेरे 8 बजे। कुछ पल करो इंतजार।
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से UPI का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में UPI के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि UPI केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि UPI अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
2: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए UPI को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक

0: नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे

0: आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
6: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15 से 50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है

0: कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमरीकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75 से 80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
3: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है।

0: हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में आरना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning. I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defense Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. U.S. says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 U.S. goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system, the Prime Minister said that UPI is now live in 11 countries, turning what was once unimaginable into an everyday reality for international payments.
3: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
2: Defense Minister Rajnath Singh has described the Indian community in Sri Lanka as a bridge between the two countries, saying they play a crucial role in strengthening friendship between the two nations. Mr. Singh, who reached Colombo yesterday on a three-day visit to Sri Lanka, made the remarks while interacting with members of the Indian diaspora. The Defense Minister said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. In his address, Mr. Singh highlighted India's rapid economic transformation, saying the country is among the fastest growing major economies in the world and contributes more than 16% to global growth.
4: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है।
5: टुडे इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 16% टू ग्लोबल ग्रोथ। ओवर द पास्ट 10 टू 12 इयर्स द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी हैज डबल्ड एंड एट अ टाइम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अप्रोक्सीमेटली 7.8%
4: है

0: 5 तेल टैंकर तबाह किए। दक्षण पश्चिमी मानसून की वापसी होने तो पहला 12 तो 21 सितंबर दरमियान मध्य दक्षणी पूर्वी ते पश्चिमी भारत के वड्डे हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद। यूएस ओपन विच अरीना सबलिंका ते फ्रांसिस टियाफो ने सेमीफाइनल विच थां बना ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक सैक्टर विच हुई शानदार प्रगति की शलाघा की है। उन्हें कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने फिनटेक सफलता की कहानी विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुंबई विच ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सिर्फ अगस्त विच यूपीआई राही 24 अरब तो वध लैण देण हुए ने। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रभाव ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो नूं यह कहने लई प्रेरित किया कि यूपीआई सिर्फ एक तकनीकी कहानी नहीं सगों एक सभ्यता की कहानी है।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: भारत के मोहरी डिजिटल भुगतान प्रणाली के विश्वव्यापी पसार का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने समझाया कि यूपीआई हुण 11 देशों में उपलब्ध है। इस तरह अंतरराष्ट्रीय भुगतान के खेत्र में जो गतिविधि कदे कल्पना योग नहीं सी हुण एक रोजाना हकीकत बन गई है। अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान लई अगले रणनीतिक पड़ा की रूपरेखा दसते हुए श्री मोदी ने सिंगापुर नाल पहला ही स्थापित निर्विघन सरहदी संपर्क वांग भाईवाल देशों के घरेलू भुगतान प्रणालियां नाल यूपीआई नूं तुरंत जोड़न दी जरूरत ते जोर दिता। डिजिटल इंडिया की सफलता बारे प्रधानमंत्री ने कहा,
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका विच रहण वाले भारतीय भाईचारे नूं दोवां देशां विचकार इक पुल दस्या है। उन्हां कहा कि दोवां देशां विचकार मित्रता नूं मजबूत करन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदे ने। श्री सिंह कल श्रीलंका दे 3 दिनां दौरे ते कोलंबो पहुंचे। उन्हां भारतीय प्रवासियां दे मैंबरां नाल गलबात कीती अते कहा कि भारत हमेशा संकट दे समें श्रीलंका दे नाल मजबूती नाल खड़ा रहेगा। उन्हां जोर दे के कहा कि दोवां देशां विचकार संबंध सांझे इतिहास सभ्याचार ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की

0: मैच विच साथी अमरीकी एलेक्स माइकलसन नूं हरा के आखरी चार विच प्रवेश कीता। आखिर च खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की फिनटेक कामयाबी की कहानी च बेशक यूपीआई का अहम योगदान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका च भारतीय भाईचारे नूं दोवां देशां दरमियान अहम पुल दस्या। अमरीका ने अपने जंगी समुद्री जहाज ते हमले तो बाद फारस की खाड़ी च ईरान के पांच तेल टैंकर तबाह किए। दक्षण पश्चिमी मानसून की वापसी शुरू होने तो पहला 12 तो 21 सितंबर दरमियान मध्य दक्षणी पूर्वी ते पश्चिमी भारत के वड्डे हिस्सों विच बारिश होने की उम्मीद। इस दे नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8:40 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਢਾਡੀ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗਾਈ ਇਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰ।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए समीर का लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं शान और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम मैं ऐसा ही हूं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए गुलजार का लिखा हुआ और विशाल भारद्वाज का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की। फिल्म का नाम ओ रोमियो।

उन्हें मस्ती में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया उड़ के मुंडा

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा।
1: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
1: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी।

0: इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। मेरा सारा
1: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए पालोमी की आवाज में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गाना। स्वानंद किरकिरे हैं गीतकार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मंच म्यूजिक हरबी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म से। गीतकार हैं तनिष्क बागची और हरबी सहारा, और संगीत दिया है तनिष्क बागची, मंच म्यूजिक और हरबी सहारा ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19650, मुंबई 400091। मन चाहेगी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय।
0: श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और निर्माता अक्षय कुमार पर। भारतीय सिनेमा हर दौर में बदलता आया है और हर दौर की उसकी एक कहानी है। 90 का दशक वो दौर था जब सिनेमा ने रुपेले पर्दे के नए सितारों, उनके एक्टिंग और उनके फन से लोगों को रूबरू कराया। अभिनेता अक्षय कुमार इसी दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऊंची कदकाठी, असरदार डायलॉग डिलीवरी,
2: निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। तोड़े सामने लेके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपए इनाम। सुनो।

कुछ समय बाद अक्षय कुमार के पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई के कोलीवाड़ा आ गए। यहाँ माटुंगा के स्कूल से कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बॉक्सिंग से खासा लगाव होने की वजह से पिता को मनाया, बैंकॉक गए और यहाँ थाई बॉक्सिंग और यहीं मार्शल आर्ट भी सीखी। पैसे कमाना भी जरूरी था, इसलिए बैंकॉक में ही शेफ के काम में लग गए।

भारत लौटने के बाद कोलकाता, ढाका और दिल्ली में भी थोड़े दिन तक अलग अलग काम करने के बाद वापस जब उनका मुंबई आना हुआ तो यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया।

अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट के क्लासेस में एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाया और कुमार ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के सहायक के रूप में काम किया। जरूरत के मुताबिक फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करते रहे, जो उनका पैशन भी था। सिलसिला आगे बढ़ा और 1987 में फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में कुमार ने अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और बाद में अक्षय कुमार ये मंच नाम अपनाया। एक ऐसी ही सुबह विज्ञापन शूट के लिए अक्षय कुमार को बेंगलुरु जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट तो मिस हो गई, लेकिन इसी शाम एक फिल्म स्टूडियो में निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार की कदकाठी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म दीदार में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया, जिसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ अनुपम खेर भी नजर आए।

इस फिल्म ने अक्षय कुमार के शुरुआती करियर को आगे बढ़ाया। कुमार की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म सौगंध में बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें चुन लिया गया। इसी वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म डांसर भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा न कर सकी। बाद में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए सफल रही और उनकी भूमिका को भी सराहा गया। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी आयशा जुल्का।

इसी दरमियान राजश्री द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी, रिलीज हुई। 1993 में केशुराम द्वारा निर्देशित फिल्म अशांत में अक्षय कुमार, डी आर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ नजर आए। फिल्म दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन फिल्म वक्त हमारा है कुछ हद तक कामयाब भी रही। समीर मलकान की फिल्म में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव रॉय की मोहरा, इन दोनों ही फिल्मों ने 1994 में अच्छा प्रदर्शन किया और सफल रही। फिल्म मोहरा में इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के किरदार को एक नई पहचान तो जरूर मिली। रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा ने एक तरह से अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया और अक्षय कुमार का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा।

यश चोपड़ा की फिल्म ये दिल लगी में अभिनेत्री काजोल के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने फिल्मी गलियारों में अक्षय कुमार को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई जिस पर फिल्म के चलने का भरोसा किया जा सकता था। फिल्म सुहाग और ऐलान जैसी कम बजट वाली एक्शन फिल्में भी अक्षय कुमार ने इसी दौरान की और इन्हें भी सफलता मिली। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में उन्होंने की। दोनों का ही निर्देशन उमेश मेहरा ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार का स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अलग था। पोनीटेल, लंबे कोट और खूंखार अंडरटेकर से कुश्ती कर उन्होंने फिल्म में खूब शोहरत पाई।

1997 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है डेविड धवन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी फिल्म थी। इसमें कुमार की जोड़ी जूही चावला के साथ भी पसंद की गई। कमाई के नजरिए से ये फिल्म औसत थी। दोहरी भूमिका वाली फिल्म अफलातून ने एक बार फिर कुमार को सफलता दिलाई। कुछ कमोबेश प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अभिनय किया। प्रीति जिंटा के साथ फिल्म संघर्ष और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जानवर को बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

सन 2000 में रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक फिल्म हेरा फेरी, जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी, कुमार के साथ साथ सुनील शेट्टी के करियर में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन, 2003 में अंदाज, जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया। 2004 में ऐतराज और मुझसे शादी करोगी। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा फिल्म खाकी में अक्षय कुमार की जोड़ी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या रॉय के साथ एक तरह से कहें तो सफल रही, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी, रवीना टंडन और राज बब्बर के साथ क्राइम फिल्म पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर चर्चित रही। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी अच्छी कमाई वाली फिल्म साबित हुई।

2006 में फिर हेरा फेरी, सिंगस किंग, 2007 में नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की अन्य फिल्में भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक तरह से। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव एक मनोरोग विशेषज्ञ का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता था। उनके साथ फिल्म में थी विद्या बालन। फिल्म में अक्षय कुमार के मजाहिया किरदार को पसंद किया गया। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म कल्ट फिल्मों में शुमार है श्रोताओ, जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गीत संगीत को भी खूब पसंद किया गया।

खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार ने दोहरी भूमिका निभाते हुए खतरनाक स्टंट्स किए, जो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान पर थे। इनके अलावा भी कुछ और स्टंट्स के लिए फिल्म में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म अजनबी में कुमार नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 2005 में आई फिल्म गर्म मसाला के लिए उन्होंने हास्य भूमिका अदा की और फिल्म फेयर पुरस्कार को अपने नाम किया। वर्ष 2007 की अगर बात करें तो उनकी चार फिल्में लगातार हिट रहीं। 2009 में रोहन सिप्पी के बैनर तले बनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना दीपिका पादुकोण के साथ आई।

वैसे इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रहीं। 2012 राउडी राठौर, 2014 में फिल्म हॉलीडे, 2012 में ही आई फिल्म ओ माई गॉड, 2015 में बेबी, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 में जॉली एलएलबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय की काफी सराहना हुई। 2016 में रिलीज क्राइम थ्रिलर रुस्तम, जिसके निर्देशक थे टीनू सुरेश देसाई।

पटकथा विपुल के रावल ने लिखी, अक्षय कुमार ने कमांडर रुस्तम का किरदार अदा किया, इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी का किरदार अदा किया, नौसेना अधिकारी रुस्तम पावरी की भूमिका को काफी सराहना मिली और अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार 2017 में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आए।

ये फिल्म स्वच्छता और खुले में शौच उन्मूलन पर विशेष ध्यान आकर्षित करती थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो अक्षय कुमार की स्वयं निर्मित फिल्म थी। इसके साथ फिल्म पैडमैन भी चर्चाओं में रही। 2019 में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 में एक्शन फिल्म सूर्यवंशी ने मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवसाय किया। 2021 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी काम किया। एटीएस प्रमुख डीसीपी वी सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार मुख्य किरदार की भूमिका में थे। 2023 में ओ माई गॉड 2,

अक्षय कुमार की कुछ और फिल्में जैसे भागम भाग, एनिमेटेड फिल्म जंबो, दे दनादन, कमबख्त इश्क, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म खट्टा मीठा, फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म तीस मार खान, फिल्म पटियाला हाउस, देसी बॉय, सिंह इज ब्लिंग, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने बड़े ही अलग अलग किरदार निभाए। अक्षय कुमार की फिल्मों को देखें तो आज भी उनके द्वारा निभाए गए तमाम किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में जगह पाते हैं। कुमार ने फिल्मी दुनिया में खुद को एक बड़े ही वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार अदा किए और यही वजह है कि अक्षय कुमार की अदायगी को लोग भूल नहीं पाते।

अपने लंबे करियर में कुमार ने स्टंट अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी 4 सीजन तक करी। टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। अक्षय कुमार सामाजिक संस्थाओं के लिए भी बढ़ चढ़कर कार्य

करते रहते हैं। कुमार को उच्चतम करदाता सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अक्षय अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। व्यायाम, किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, पार्कौर के संयोजन के साथ खुद को फिट रखते हैं अक्षय। कुमार भारतीय कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स टीम के मालिक भी हैं। फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना उनकी पत्नी हैं।

अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम नितारा है। कुमार को दो फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अजनबी और गरम मसाला के लिए दिए गए। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।

0: अक्षय कुमार विंडसर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सिनेमा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: ओ शेरा उठ जरा।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम श्रोताओं आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार पर। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

के फनकार। FM बैंड 101.1 MHz ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी ट्यून कीता होया आकाशवाणी FM बठिंडा। स्रोतियो सवेर दे 10 बज रहे ने, दलबीर हाजिर है प्रोग्राम गीत पिटारा लैके तुहाडी नज़र करदे हैं। सदाबहार पंजाबी गीतां ते आधारित यह प्रोग्राम गीत पिटारा दी पहली पेशकश, जिसनों लोक तत्था आवाज़ दिती है अमर सिंह चमकीला ने, संगीत चरणजीत आहूजा दा।

लाल पद आने वाला आ गया जदों दा छुट्टी लाल पद आने वाला आ गया जदों दा छुट्टी मोतिए दा फुल तू बनी मोतिए दा फुल तू बनी वे मैं जा मेरा रब जानदा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेनदेन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर कल कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाक अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए गए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिलिमे की सुरंग में पानी निकालने और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और वहां पहुंचने में कठिनाई के कारण टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। उधर अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिन में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण तथा बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज जेसिका ने एम्मा नवारो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ट्विस्ट से ही करेंगे। कहने का मतलब ये कि इस पूरे घंटे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट विद बॉलीवुड की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारे सरप्राइजेस, और वो कौन से हैं बताऊंगी इस गाने के बाद।

ये जो आप ट्विस्ट कर रहे हैं ना, इसके बीच में ये मत भूल जाइएगा कि मेरी बातों को भी आपको ध्यान से सुनना है। बॉलीवुड की अपडेट्स ही होंगी, लेकिन वो इस तरह से होंगी 11:30 बजे तक, जिनमें से आप अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा जो मैं 11:30 बजे बॉलीवुड सरताज के लिए सवाल पूछूंगी। तो इस शो की ये परंपरा है कि आपके लिए एक सवाल आता है जिसका जवाब अगर आपने सही दे दिया तो बॉलीवुड सरताज बनाया जाता है, और बॉलीवुड सरताज हमसे बात करते हैं और हम उनका नंबर खुद डायल करते हैं, एक नंबर कोई भी रैंडमली उठा के। तो फिलहाल आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, कहने का तात्पर्य ये है, और 11:30 बजे जब सवाल आएगा तो व्हाट्सएप मैसेज करके वो आसान सा जवाब आपको दे देना है, और आपका नाम शामिल हो सकता है बॉलीवुड सरताज के लिए। और अगर नहीं भी हुआ तो आपका नाम और शहर का नाम तो जरूर शामिल होगा इस शो में। तो इतने सारे सरप्राइजेस, और आज बर्थडे भी है किसी का, और बॉलीवुड की क्या क्या अपडेट्स हैं, आपके फेवरेट स्टार्स की मूवीज के बारे में वो जानना नहीं चाहेंगे? सब कुछ यही होता है इस घंटे। आज तो बीटी विद बीटी चल रहा है, बॉलीवुड शेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। तो एकदम धमाका मचाने के लिए, बवाल मचाने के लिए तैयार रहिए और सुनते रहिए ध्यान से बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

देखिए जब फिल्म बनती है ना तो सभी एक्टर्स को और फिल्म बनाने वालों को जिन्होंने मेहनत की है उनको कभी कभी ऐसी तमन्ना होती है कि इतने दिल से बनाई है, इतनी बढ़िया मूवी चली है या नहीं भी चली है तो भी इतने दिल से बनाई है, इसको कुछ ना कुछ रिकग्निशन तो मिलनी चाहिए। और कुछ क्या, जब बड़ी बड़ी रिकग्निशन मिले तो बात तो एकदम बनी जाती है। और जब नेशनल अवार्ड्स की बात हो तो भाई क्या ही, मतलब पूरी जिंदगी बन जाती है उस एक्टर की या उस फिल्म की या उस फिल्म से जुड़े लोगों की। जबकि कोई अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड जब मिलता है, मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का सबको इंतजार रहता है और पूरे देश को इंतजार रहता है। और इस बार भी सब की आंखें एकदम इंतजार कर रही हैं उस समारोह को देखने की, भले ही लाइव ना देखें लेकिन देखें, जाने समझे कि आखिर किस फिल्म को, किस एक्टर को ये अवार्ड मिला। और हाँ, इस बार कुछ खास है, कुछ अलग है, और वो अलग क्या है वही तो बताना है मुझे। आपको तो पता चल गया है ना कि 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड अब आने ही वाला है, ये सेरेमनी होने ही वाली है, लेकिन इस बार खास क्या है? इस बार दिल्ली नहीं, किसी खास जगह पर ये सेरेमनी आयोजित होगी। तो भाई दिल्ली के, हमेशा से हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि दिल्ली में ही ये हमारी राष्ट्रपति सम्मान देती हैं और इस सेरेमनी के लिए बड़े बड़े एक्टर्स सारे यहीं आते हैं, लेकिन अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे? ये सब जाएंगे दिल्ली से हटकर गुजरात। यस, गुजरात के केवड़िया में उनको जाना होगा, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को ये सम्मान देंगी। और अब इस जगह का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति यहीं पर है। और अब इसके बारे में, यानी अवार्ड्स के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली के विज्ञान भवन में ये आयोजित नहीं होगा, पहले हमेशा से आयोजित होता रहा है। जो पहला नेशनल अवार्ड हुआ था वो दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था, लेकिन अब इस बार उसके बाद लगातार यहाँ पर हुए, ऐसा नहीं है कि कभी इस जगह से हटकर कभी कोई अवार्ड हुआ ही नहीं, लेकिन इस बार ये जो 72वां संस्करण है वो गुजरात में होने वाला है। और अब रही बात फिल्मों की, तो आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म मिला है।

और ये सम्मानित की जाएगी मूवी। और अभिनेत्री की बात करें तो यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है, राजकुमार राव को और श्रीकांत को बेस्ट फीचर फिल्म का चुना फिल्म चुनी गई है, राजकुमार राव की श्रीकांत जो मूवी है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों बताऊँ आप सब, जब ये मूवी के बारे में जब आएगा और डिटेल आएगी और नजदीक आएंगे, और वैसे क्या पता आपको पता भी हो कि हम सबको मतलब रहता है ना कि किसको बेस्ट एक्ट्रेस किसको बेस्ट एक्टर, तो वो मैंने जानकारी आपको दे दी। और अगर हाँ आपको लग रहा है कि एक्टर कौन और किस फिल्म के लिए चुना गया होगा बेस्ट बॉलीवुड का, तो वो आप गेस कीजिए और मुझे भी बताइए। अगर आप बता सकते हैं, नहीं बताएंगे तो भी कोई बात नहीं, हम बॉलीवुड ट्रेलर्स में कभी ना कभी आपको बता ही देंगे। फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी है कि दिल्ली नहीं गुजरात जाना होगा इस अवार्ड को लेने के लिए, एक्ट्रेस को हमें नहीं।

लगान फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, अब जब ये मूवी बनाते हैं तो चर्चा तो बन ही जाती है, और चर्चा होनी भी जरूरी है क्योंकि इसमें स्वयं आमिर खान हैं और जो परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, तो इनकी जब मूवी आती है तो लोगों को लगता है कुछ तो खास होगा, कुछ तो दमदार होने वाला है। ललकारा मूवी का नाम है और अभी ये एकदम फाइनल नाम नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी का नाम ललकारा होगा, और जब कहा जा रहा था तो मैंने भी कह ही दिया। और आपको बता दूं कि इसका अपडेट एक नया आया है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? तो धुरंधर मूवी के से फेमस हुए हमारे दानिश पंडोर इस मूवी में नजर आएंगे। आप दानिश पंडोर को नहीं जानते हैं? आप दानिश को नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही नाम सुना ना

कि धुरंधर के उजैर बलोच की एंट्री होने वाली है, तो फिर मुझे समझ में आया, अरे उजैर अपना ये धुरंधर में एंट्री मार चुके हैं, ऐसा ऐसी खबर आ रही है। और अब धुरंधर के उजैर बलोच आमिर खान की ललकारा में क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आज फिर लेट हो गए?
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

लव लॉटरी ये फिल्म आने वाली है और इसका ट्रेलर जो है रिलीज हो गया है। अब इस मूवी में क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इस मूवी में बहुत कुछ है। लव लॉटरी जैसा कि नाम बता रहा है, प्यार तो है ही, लेकिन उसके बाद विश्वासघात भी है और असली रिश्तों की पहचान भी है, और मॉडर्न प्यार है जहां पर सस्पेंस है, थ्रिलर है, और फिर कोर्ट रूम ड्रामा तक ये मूवी पहुंच जाती है, मतलब ये लव पहुंच जाता है। और तो लव लॉटरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है, आप देख सकते हैं। अक्षय ओबराय मूवी में है, विजय कोहली है, अग्नि अग्यारी है और निर्देशक है अरविंद पांडे। और साथ में इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में न सिर्फ मॉडर्न रिलेशनशिप दिखाई गई है, शादी विश्वासघात दिखाया गया है, बल्कि उससे जुड़े कानूनी दांव पेचों को भी आप समझेंगे गहराई से, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस मूवी में ड्रामेटिक अंदाज में किस तरह से पुरुषों के अधिकारों की भी बात की गई है। क्या पता आपको ना पता हो, तो आपके अधिकारों की बात भी इस मूवी में की गई है। जो पुरुष समाज सुन रहे हैं तो इस मूवी को आप चूज कर सकते हैं, देखना या ना देखना। 18 सितंबर को ये मूवी रिलीज होगी। 2 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर है, आप चाहें तो पहले उससे देखें और अंदाजा लगाएं, जहां पर ये बताया गया है कि प्यार वैसा होता नहीं है जैसा दिखता है। आप अग्री करते हैं या नहीं?

मैं ही थी। फिलहाल आपको बता दूं कि सवाल पूछने का वक्त हो गया है, तो आपसे आज का बॉलीवुड सरताज सवाल पूछ लेती हूं। इस बार का नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित होने वाला है? यस, आज का सवाल है, इस बार का नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित होने वाला है? दिल्ली में तो नहीं होने वाला है, ये मैं बता चुकी हूँ, और कहाँ होने वाला है ये भी बता चुकी हूँ। बस आपकी बारी है, आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बताना है और आपको बन जाना है बॉलीवुड सरताज। हमसे बात करने का मौका मिलेगा, कॉल हम मिलाएंगे, आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आंसर बताना है। नंबर बता देती हूं और आपको बता देती हूं वो तरीका जिससे आपका नाम तो एटलीस्ट शामिल होगा ही। 9868107070 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, और तरीका यह है कि आपको सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद आंसर लिखना है और भेज देना है इसी नंबर पे, 9868107070। आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स, बबीता त्रिपाठी के साथ।

0: छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट कर आते हैं और आज जन्मदिन किसका है उनको शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपने सवाल अगर नहीं सुना है तो एक बार फिर से दोहराते हैं। आपको बताना है कि इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड्स का जो समारोह है वो कहाँ होने वाला है। 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको आंसर देना है। एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए, 9868107070। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और भेज देना है इस नंबर पे।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together.

ये आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और आज है जन्मदिन हमारे बॉलीवुड में खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कौन? राजीव हरि ओम भाटिया। आप कह रहे होंगे कि ये तो अक्षय कुमार के लिए कहा जाता है, तो अक्षय कुमार वही तो है, राजीव हरि ओम भाटिया। और वो फिल्म वाला नाम उनका अक्षय कुमार है, लेकिन रियल नेम यही है। आपको पता था क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी है। नहीं पता तो हमने बता दिया, क्या ही गलत कर दिया। अब आपको बता दें कि उन्होंने शुरुआत की थी 1991 से, और सौगंध मूवी थी। उसके बाद जब ये खिलाड़ी बने, तो भाई ऐसे बने खिलाड़ी कि बता ही दिया आज तक कि इनसे बड़ा खिलाड़ी तो भाई है ना होगा। क्या क्या नहीं किया इन्होंने, और कोई ट्रेनिंग नहीं ली है एक्टिंग की स्पेशली, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डांस के लिए एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग नहीं ली। बंदा मस्त मौला है और अपने ऊपर ध्यान रखता है, अपने फिटनेस का ध्यान रखते हैं, और साथ में अपने करियर को फोकस, मतलब बहुत सीरियसली लेने वाले, हार्ड वर्क करने वाले इंसानों में जाना जाता है। डिसिप्लिन तो इनसे कोई सीखे, और वही रंग ला रही है। क्या एक्शन, क्या कॉमेडी, क्या देशभक्ति, किसी तरह की मूवी हो, हर तरह की मूवी में अगर कोई फिट हो रहा है इस वक्त आज तक, तो वो है हमारे खिलाड़ियों के खिलाड़ी। और हर तरह की मूवीज में ना सिर्फ वो फिट हुए हैं, बल्कि एक से बढ़कर सुपर डुपर हिट फिल्में भी दी हैं। तो अब इनको हम जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देने के लिए बैठे हुए हैं, और दिल से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देखते हैं और देते हैं, और चाहते हैं कि ये ऐसे ही काम करते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें अपने अपनी जो दिनचर्या है उससे, जैसे सुबह 4 बजे उठने वाली बात, और उठ के मतलब इनके हिसाब से लोग उठते हैं, ये लोगों के हिसाब से नहीं, लेट नाइट पार्टीज नहीं करते और कुछ भी ऐसे ही नहीं खा लेते। अगर उनके पास कम भी पैसे थे ना, तो इन्होंने एक जगह कहा था कि हम मैं 20 रुपए का केला खरीद के खा लिया करता था, कुछ भी इधर उधर का खाने के बजाय, मतलब हमेशा से हेल्दी डाइट। और ये सब किस तरह काम करती है और किस तरह से रंग लाती है, ये स्वयं इसके उदाहरण है। और इनकी फिल्मों की बात करें तो सौगंध, खिलाड़ी, और उसके बाद ये जब एक्शन मूवीज आ रही थी, संघर्ष, जानवर, सुहाग, ये दिल लगी, अंदाज और ऐतराज, धड़कन, नमस्ते लंदन, उसके बाद जब कॉमेडी की मूवीज आई तो भाई क्या है, एक से बढ़कर एक। वेलकम की बात कर लीजिए, भूल भुलैया, इनकी सीरीज आई, मतलब खिलाड़ी की भी सीरीज आई, फिर हेरा फेरी, सिंह इज किंग, गरम मसाला, उसके बाद फिर बहुत सारी देशभक्ति की भी मूवीज आई, और सोशल

एक तरह से बहुत सारे जो मैसेजेस देने वाली मूवीज थी, ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा जैसी मूवी भी इन्होंने मतलब उसमें भी काम किया, और एक से बढ़कर एक मूवीज है। मतलब आप किसी भी तरह की मूवीज उठा लीजिए और सब में हमारे खिलाड़ी कुमार एकदम फिट फिट और फिट, और ऐसे ही फिट रहे, ऐसे ही मस्ती से शोज मतलब शोज भी करें और फिल्में बनाएं और हमें एंटरटेन करें और ऐसे ही डांस करें, ऐसे ही मस्ती करें इनके साथ हम। यही दुआ है, ढेर सारी शुभकामनाएं इनके जन्मदिन पर, और अब इसी मस्ती में एक मस्ती वाला गाना जिसमें अक्षय कुमार ने क्या परफॉर्म किया था। मतलब वैसे परफॉर्मेंस उनकी हर गाने में ही रहती है, हर फिल्म में ही रहती है, लेकिन बस ये मस्ती वाला गाना चला रही हूं आज बड़े टाइम बाद। स्टे ट्यून्ड।

बॉलीवुड सरताज के लिए जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो मतलब एक क्या कई सारे, एक जने ने नहीं पता नहीं कितने लोगों ने कर दिए हैं। और ये सब नाम लेना मुझे बहुत बड़ा काम लग रहा है। क्यों? क्योंकि नाम ही बहुत सारे हैं। आंसर लगता है बहुत सारे लोगों को पता था, और क्योंकि सभी लोगों ने सही जवाब ही भेजा है। और बहुत ध्यान से आप सब सुनते हैं, थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं नामों की। कार से मोहम्मद फुरकान सही जवाब, राजकुमार संतानी महाराष्ट्र से, शिव मेरठ से, तरुण कोहली सूरजकुंड मेरठ।

से, रोहित श्रीवास्तव जेली से, और सलीम मलिक मेरठ से, कंचन सोनिया विहार दिल्ली से, संदीप का कहां से आया नहीं लिखा, बाद में लिखा होगा, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, निकिता पारेकर पुणे से लिख रही हैं, विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, और अगला मैसेज मेरठ से कान्हा का है शायद, और ये नाम शुरुआत में क्यों नहीं आपका दिख रहा है भाई, विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से, नीतीश कुमार रेशम भगौरा झारखंड, मतलब बहुत लंबा भगैया है नाम, रेशम नगर भगैया झारखंड से, नीतीश कुमार गुजरात, ये कहाँ है भाई, सुनील कुमार, आपने अपना नाम पहले लिखना चाहिए था भाई, सुनील कुमार यादव का सही जवाब है, हरीश गौड़ मेरठ से लिख रहे हैं, सुनील ने भी कहीं से तो लिखा है, कुशवाहा कुछ करके नाम है, और विशाल गुप्ता का मेरठ से दिख रहा है, अगला नाम विवेक गर्ग का है, इन्होंने भी अपना नाम पहले लिखा होता शायद तो दिख रहा होता, मतलब कुछ लंबा भी कर देते हैं मैसेज तो भी शायद हमारा कंप्यूटर नहीं दिखाता है अपना नाम, आपका नाम पहले, विनोद सोनी मेहना चौक से, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, मनिका सिक्किम से, और मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से, शबनम का भी कहीं से मैसेज दिख रहा है, और नारायण प्रधान का मैसेज दिख रहा है, और अर्चना राजपाल का भी मैसेज दिख रहा है, जगसीर सिंह का भी मैसेज दिख रहा है, लेकिन नाम नहीं दिख रहा है जगह के, जगह का नाम आप अगर शुरुआत में ही लिख देते तो शायद दिख जाता, राजीव कुमार मेरठ से लिख रहे हैं, गुजरात, ये फिर आपने नाम पहले नहीं लिखा है, किसने ये किसने गुस्ताखी की है, चलिए हम देख ही लेते हैं, उमेश कुमार, हर बार आप ये कर रहे हैं उमेश कुमार, देख लीजिए, और अगला मैसेज मुझे दिख रहा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सुरजीत का, और ऋषु कटारिया पवन कटारिया का भी पंजाब से मैसेज दिख रहा है, आप सब बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से मैसेज करने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, और रही बात बॉलीवुड सरताज की, तो ढूंढना पड़ेगा आज तो मुकाबला मुश्किल होने वाला है, सारे के सारे सही जवाब कोई एक नाम सेलेक्ट करना है,

0: और आकाशवाणी रेनबो पर समय आ चुका है आपसे मिलवाने का आज के बॉलीवुड सहताज को। तो देखते हैं आज का बॉलीवुड सहताज कौन है, वो स्वयं बताने वाले हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम जगशीर सिंह ढिल्लों जी, प्रांपा दीवानदर तलवंडी साबो जिला बठिंडा जी, पंजाब से बोल रहे हैं हम।
0: बठिंडा से। देखिए, अब मैं अलग अलग स्टेट्स में की बात करने वाली हूँ और अलग अलग स्टेट जाकर बात करने वाली हूँ। बठिंडा पहुंच गए हैं हम लोग। और जगसीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर। तो
1: जी थैंक यू जी।
0: चलिए अब दूसरे स्टेट की बात करते हैं और बताते हैं कि आने वाला यानी इस साल का जो नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह है वो कहाँ होने वाला है।
1: वो गुजरात में होने वाला है। थैंक
0: यस, गुजरात पहुंच गए हम लोग। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद आज का बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। जगसीर,
1: धन्यवाद
0: कैसा लग रहा है
1: धन्यवाद,
0: आपको?
1: बहुत अच्छा लगा
0: बहुत अच्छा लग रहा है। तो
1: पहली
0: क्या करने वाले हैं
1: बार।
0: आज इस अच्छा लगने की वजह से?
1: अच्छा बस, और रेडियो और सुन लेंगे और क्या।
0: रेडियो सुनने से अच्छा क्या काम हो सकता है जगसीर, है ना?
1: हाँ जी
0: आपका मूड हमेशा अच्छा रहता है, आपका काम होता रहता है, कोई भी रुकावट नहीं आती
1: हाँ जी
0: है। तो क्या करते हैं जगसीर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना। हम पंजाब के थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में बताइए, क्या करते हैं उसके बारे में बताइए, हम भी जानना चाहते हैं।
1: पंजाब की ज्यादा खेती होती है जी।
0: खेती होती है
1: हाँ जी,
0: तो क्या क्या फसलें इस वक्त लगी हुई हैं आपके खेत में?
1: चावल है जी।
0: चावल है और
1: हाँ जी, चौना जी।
0: बस।
1: हाँ जी, चौना ही लगाया है जी, और पशुओं के लिए है मक्का।
0: अच्छा, तो ठीक है। अभी खेती वेती का कोई काम कर रहे थे या कैसे सुन रहे थे आप?
1: नहीं, अभी तो घर में था बस। हाँ जी
0: अभी घर में थे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आकाशवाणी
1: हाँ
0: रेनबो
1: जी
0: के साथ जुड़े रहिए, ठीक है?
1: ठीक है जी। थैंक
0: ओके जगसीर, कांग्रेचुलेशंस
1: यू
0: वंस मोर, बाय बाय।
1: थैंक यू थैंक यू बाय।
0: तो ये थे जगजीर हमारे बठिंडा से, और आज का आंसर गुजरात था कि गुजरात में जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की सेरेमनी

होने वाली है इस बार। और रही बात मेरी यानी बबिता त्रिपाठी की, तो वो तो अभी जाएंगी नहीं, लौट कर आएंगी 1 बजे फिर से। फिलहाल के लिए तो जा रही हैं क्योंकि हिमानी आएंगी प्लेट कूल लेकर, लेकिन 1 बजे जब आऊंगी तो रेनबो हेल्पलाइन लेकर आऊंगी और अपने साथ लेकर आऊंगी एक गेस्ट भी, और उनका नाम पता है क्या है? उनका नाम है वंदना यादव। ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनके साथ आप भी जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज वो बात करने वाली है, बताने वाली है क्रिएटिव राइटिंग के बारे में। टॉपिक, जहां नजर वहां कलम, क्या जबरदस्त रखा है। तो इस पर अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी हो सकती है, क्या पता राइटर बनने के बारे में आप भी सोच रहे हो, तो या आपके आसपास कोई ऐसे राइटर हो जिनको आप टिप्स देना चाहते हो, या आप अपने करियर की तलाश में हो, तो किसी भी वजह से आप सुनिएगा जरूर, अपने सवालों के साथ जुड़िएगा जरूर इस शो में भी जिसका नाम है रेनबो हेल्पलाइन। फिलहाल मुझे यानी बबिता त्रिपाठी को, बीटी विद बीटी यानी बबिता त्रिपाठी बॉलीवुड ट्रेल्स, दोनों को इजाजत दीजिए। बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की

0: सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी। श्री नवीन ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो गांवों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
0: भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और सीमित पहुंच के कारण टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूरिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण और बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The BJP will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan from the 17th of this month to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years in public life. Addressing a press conference in New Delhi today, BJP President Nitin Naveen said, Mr. Modi will complete 25 years of his public service on the 7th of October, as on this day in 2001, Mr. Modi began his tenure as the Chief Minister of Gujarat. He added that over these years, Mr. Modi has steadfastly continued this journey of service, guided by the mantra of From public service to national service. The Seva Sankalp Abhiyan will begin with organizing blood donation camp. Mr. Naveen informed that Seva Jyoti Kalash Yatra will also be taken out on the

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 9 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अखर बोलदे ने।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बुड्ढे अते जवान 100 गल्ला दी एक गला सही।
1: सिर्फ पैसे भेजन ले क्यू आर कोड स्कैन करीदा है जा पिन पाईदा है, पैसे मिलन ले नहीं।
2: RBI कहंदा है क्यू आर कोड स्कैन करदे समय जा पिन पाउंदे समय थोड़ा ध्यान नाल।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रे

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: जी, प्रोग्राम चल रहा है घर परिवार, तो समा हो चुका जी 12:51 ते 18 सेकेंड। तो प्रोग्राम दे विच एक होर भैन ने फोन मिलाया है, कर दिया इन्हां नाल गल।
3: हैलो
4: जी, मैं सत श्री अकाल।
3: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
4: और ठीक है ठाक है?
3: हाँ जी, तुसी ना रेडियो तो थोड़ा जा दूर होके गल करो।
4: बंद कर दी।
3: हाँ जी जी, नाम दस दो अपना।
4: करमजीत जी
3: जी।
4: पूले तो जी,
3: प्रोग्राम दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद, तुहाडा भी बहुत बहुत जी।
3: हां जी, ते आज

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 9 सितंबर दिन बुधवार नू शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अख

0: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
1: प्रोग्राम दे विच अगले कॉलर ने टेलीफोन मिलाया जी, जानदियां इन्हां दी फरमाइश। हेलो हेलो,
2: हाँ जी
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार मैम, सत श्री अकाल जी।
1: हाँ जी सत श्री अकाल जी, नाम दस दो अपना।
2: मैम राजा गल कर रहे हैं बठिंडा तो जी।
1: जी राजा जी, प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया मैम
1: जी। ते गीत केड़ा सुनोगे तुसी अज?
2: मैम फिल्म जी दाग दा फायर
1: जी,
2: उच सॉन्ग मैम दिल दीवाना ना जाने कब खो गया
1: जी। ठीक है जी, तुहाडी पसंद दा गीत सुना रहे हैं। ते प्रोग्राम दे विच तुसी कॉल कीती उहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: थैंक यू मैम, बहुत मेहरबानी
1: जी।

0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों?
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या?
0: क्या?

0: जी
1: हाँ जी, सत श्री अकाल जी। नाम दस दो अपना।
0: नाम जी मेरा सुशील बरनाला जी, सुरजीत
1: सुरजीत
0: सिंह बरनाला,
1: जी
0: पिंड मरा आ जाओ रामपुरा
1: जी
0: पुल कोल। हाँ
1: जी सुरजीत सिंह जी, प्रोग्राम दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है
0: जी, मर्द
1: जी। गीत केड़ा सुनोगे तुसी अज्ज
0: फिल्म दा सुना दो जी।
1: जी? मर्द फिल्म दा गीत दे बोल।
0: हाँ जी,
1: गीत केड़ा मर्द फिल्म चो
0: मैं तंगे वाली।
1: जी? ठीक है जी, तुहाडी पसंद दा गीत असी सुना रहे हैं ते प्रोग्राम दे विच तुसी कॉल कीती, ओहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद, शुक्रिया मैडम,
1: जी
0: धन्यवाद, ओके।

मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा।

0: youth parliament competitions in Jawahar Navodaya Vidyalayas for the past 30 years. Benchmark domestic equity indices paired losses from the day's lows but remained in the red during the afternoon session today. The Sensex declined 437 points to 75,140, while the Nifty lost 89 points to 23,547 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 and small-cap 100 indices fell 0.3% each a short while ago. Brent crude prices breached the US dollar per barrel mark in intraday trade, reaching their highest level in 7 weeks and continuing to trade near those elevated levels. The Ministry of Labour and Employment, in collaboration with the Maharashtra government, will organise a national conference on building and other construction workers, BOCW, in Mumbai on the 11th and 12th of this month. The conference will be chaired by Union Minister of Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandviya. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Minister Rajnath Singh holds meeting with Sri Lankan President Anuradha Kumaradesanaike in Colombo. Both leaders reaffirmed to work for security, peace and prosperity of the region. Final breaks, finance ministers and central bank governors meeting kicks off in Mumbai. Ministry of Women and Child Development National Nutrition Month launched in Varanasi. BJP to launch month-long Seva Sankalp Abhiyan from 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life. Forecast of heavy rain over eastern and northeastern states for next 24 hours. And in US Open tennis, Ben Shelton enters men's singles semi-final, beating defending champion Carlos Alcaraz. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधा कुमारादेसनायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधा कुमारादेसनायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज

0: में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ड्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके निर्माण की, वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन,

0: ये दृढ़ संकल्प सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
0: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा

0: प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी हिंदी विच खबरां दे बुलेटिन दुपहर समाचार आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी ट्यून कीता होया आकाशवाणी FM बठिंडा। स्टूडियो रिकॉर्डिंग ते समय है जी बाद दोपहर 2:30 अते 28 सेकिंड। हुण पेश है तुहाडियां फरमाइशां ते आधारित प्रोग्राम सुरीली दुपहर।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: जी अमनदीप, प्रोग्राम चल रहा है जी सुरीली दोपहर ते जिहड़े साडे सुनेहे भेजे ने साडे स्रोतियां ने, सब तो पहला श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, ते पिंड बुरज मानसा नेड़े मौड़ मंडी तो साडे कोल मैसेज आया जी। राम सिंह तगड़, भिंदर कौर तगड़, कमलप्रीत सिंह तगड़, काकू जसल पिंड शेखपुरा, गुरजीत नंबरदार मानसा कलां, मंगू राजस्थानी मौड़ मंडी, मलकीत धर्मिका मानसा कलां, तगड़ फैमिली सारी। गीत इन्होंने पसंद किया जी, जिहड़ा कि
4: जी सानू लगातार वट्सअप सुनेहे आ रहे ने 70173 73146 नंबर ते, ते सानू चलदे प्रोग्राम विच साडे स्रोते इस नंबर ते वट्सअप मैसेज करन ते अपने पसंद दा गीत दसन, ते इसे दे नाल सानू खत प्राप्त होया है जी पिंड त्योणा जिला बठिंडा तो। मंगा सिंह बराड़, गुरमेल सिंह बराड़, महकदीप कौर बराड़ ते करनदीप सिंह बराड़, मसीतां डब्बाली तो दर्शन लोट, सरगुन इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी सागर, हनी लोट, ते अमरगढ़ तहसील शादुल शहर तो कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, राजा सिंह मान, कुलविंदर कौर मान, ते KS मान, ते इसे दे नाल खत मिलिया जी मुक्तसर तो बाबू सिंह तिमान, बलजिंदर कौर तिमान, रवनीत, निशु ते भुपिंदर।
3: जॉर्डन संधू के गीत की फरमाइश की है जी, मट्टू परिवार ब्लाक पत्ती पिंड माड़ खुरद जिला बठिंडा तो, जगजीत बट्टू, रणजीत कौर मट्टू, जिमी फौजी, ते सुखपाल सिंह, सवर्ण कौर, लवप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, ते रुपिंदर कौर नैशनल कलोनी बठिंडा तो। पिंड फुलो मिठी तो राम सिंह टेलर, लक्ष्मण सिंह टेलर, कुलजिंदर सिंह, मनप्रीत कौर, जसप्रीत जस्सी, पोतरा गुणताज वीर सिंह, दोता सुखमन वीर सिंह, पिंड हुसन हुसनर तो जिहड़ा ये साढ़े तक संदेशे भेजते हैं इस गीत दे।
4: चलो फिर आप इन्हां दी पसंद दा गीत चला दें जी।
3: जी बिल्कुल।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: इस गीत तो बाद अगले जिहड़े गीत की फरमाइश भेजी है जी, वह भेजी है पिंड तंगौरी तो जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली तो गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर, सहजप्रीत सिंह पिंड ढिलवां तो, सुखदीप सिंह, प्रगट सिंह पिंड गिदड़वाहा तो, बाहू सिंह पिंड लालबाई तो, नछत्र सिंह। तो इस गीत की फरमाइश भेज रहे हैं जी गुरमेल सिंह, कुलदीप कौर ते डॉक्टर हरपुल। तो अगला जिहड़ा गीत दी जिहड़ी फरमाइश भेजी है जी, वह एक साढ़े बहुत ही दूर दे सरोते सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, सहारनपुर तो सानू भेज रहे हैं यह गीत दी फरमाइश। ते अमन जी तुसी दसो कि होर किहड़े किहड़े सरोतिया ने इस गीत दी जिहड़ी आ फरमाइश की है
4: जी। पिंड कोटशमीर तो, कोटशमीर नेड़े पार्क माखापत्ती तो, जथेदार बाबा प्यारा सिंह, सुखपाल सिंह, मेजर सिंह पंजू, पप्पू शर्मा, गुरमेल सिंह चट्ठेवाला, प्रगट सिंह ढिल्लो, जगजीत सिंह मट्टू, सुखदीप सिंह गिल, ते श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, इन्हों का पोतरा सुखमनजीत सिंह ते पोतरी सहजप्रीत कौर, ते महादेव घाट अमलेश्वर तो डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, बाबू रियांश ठाकुर, ते पाटापुर दतरेंगी तो द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका पंजाब तो श्री सरदार मलकीत सिंह कुड़ियाणा, मनजीत कौर पिंड बठिंडा तो, दपिंदर सिंह चेयरमैन पोता, गुरशब्द सिंह, जीत सिंह कुड़ियाणा, दर्शन सिंह साबका सरपंच, ते

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियों, मिति 9 सितंबर

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और मंदाकिनी जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको भी मंदाकिनी जोशी का बहुत बहुत प्यार और नमस्कार और सभी सखियों और सखाओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और बताइए क्या हालचाल है
1: भाई। हालचाल तो अच्छी है। हाँ थोड़ा सा मौसम का असर है।
0: सर्दी जुकाम
1: हल्का मौसम का बदलाव आती ही ना सबसे पहले शरीर पर उसका असर होता है, आपके मन पर उसका असर होता है और थोड़ा सा आप प्रभावित हो ही जाते हैं।
0: पर ऐसा है ना कि जब हम इस मंच पर आते हैं तो उन सारी बातों को हम भूल जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जब आप बात करते हैं कि भाई

0: पारिवारिक मिलन समारोह, तो ये हमारे एक तरह से पारिवारिक मिलन समारोह ही है।
1: यानी हर दिन होता है श्रोताओं और सखियों के संग में।
0: बिल्कुल, तो वो हमारे परिवार का ही हिस्सा हो गए हैं, तो हम सब एक तरह से रोज ही मिलते हैं इस कार्यक्रम के मंच पर और हम ठीक हो जाते हैं। ये तो एक छोटी मोटी बातें हैं
1: जी
0: जहां हम अपनी बात साझा कर लेते हैं।
1: और ऐसा है ना कि ये तो हमारे पारिवारिक मिलन समारोह की बात हुई, पर आजकल ऐसा हो रहा है ना कि नए जमाने के जो युवा वर्ग हैं इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका इस तरह के मिलन समारोह में उपस्थिति कम हो जाती है।
0: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जिंदगी में जो है व्हाट्सएप या इंटरनेट या है ना ये ट्विटर
1: जी
0: सोशल मीडिया ज्यादा उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं और
1: जी
0: वो जो आभासी दुनिया है ना वो उनकी दोस्त ज्यादा बन गई
1: वो
0: है।
1: उन्हें ज्यादा लुभाती है।
0: हाँ, तो पारिवारिक मिलन समारोह में वो कम से कम उपस्थित होना पसंद करते हैं।
1: जी
0: और एक बात मैं और कहना चाहूंगी सोनाली, कई जगह यहाँ पर माता पिता को भी मैं थोड़ा सा दोष देना चाहूंगी जहाँ वो कहते हैं अरे हमारे बच्चे तो कहाँ आ पाएंगे, घर में बैठे हैं, बिजी हैं, पढ़ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो वो क्यों नहीं लाते अपने बच्चों को किसी पारिवारिक मिलन समारोह में लेकर।
1: या उनके हिसाब से इस तरह का आयोजन हो, जैसे बच्चों को पसंद है कि कुछ गेम हो, कुछ अलग बातें हो, कुछ उनकी पसंद का खाना हो, तो
0: हाँ
1: फिर वो भी आएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना, कई बार जब बच्चे या युवा वर्ग खासकर मिलते हैं तो बड़े बुजुर्ग उन्हें सिर्फ सलाह देने लगते हैं, भाई क्या है आजकल तो तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे हैं, या फिर तो तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल में ही होता है। उनसे कुछ अच्छे विचार व्यक्त किए, अच्छी तरह से बात की, तो वे भी शामिल होंगे।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सोनाली, लेकिन मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को आपको हर फरमौला बनाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लें।
1: जी
0: उनकी शर्तों के अनुसार कार्यक्रम रखा जाएगा, उनकी शर्तों के अनुसार खाना रखा जाएगा, या उनकी शर्तों के अनुसार हमारी दादी नानियां या दादा वगैरह कुछ कहेंगे, ऐसा हर वक्त होता नहीं है। जिंदगी है तो सुझाव, उलाहना, शिकायतें, ये सब चलता रहता है, लेकिन एक युवा को, खासतौर से जो हमारे बच्चे युवा होते बच्चे हैं,
1: जी
0: उन्हें चाहिए कि इस माहौल में भी वो रच बस जाएं और अपनी उपस्थिति जो है छोड़ जाएं।
1: जी यानी इस तरह के आयोजन अगर घर में बार बार होंगे तो युवा वर्ग आएंगे ही उसमें, है
0: हाँ,
1: ना।
0: उन्हें आना पड़ेगा
1: जी
0: और उनके अंदर एक जो है कहते हैं ना कि मिलने जुलने की भावना हमें
1: जी
0: पैदा करनी होगी कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वो किस तरह से पेश आए, जो
1: जी
0: छोटे बच्चे हैं वहां उनके साथ किस तरह से पेश आए, और जो अपने समकक्ष हैं, अपने बराबर हैं, उनको किस तरह से वो ट्रीट करें,
1: जी
0: तब जाकर एक अच्छा मिलन समारोह बन सकता है। यूं कहें कि परिवार में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: जी और ऐसा होता है ना, जब हम मिलते जुलते रहते हैं और हमारे जीवन में कुछ विकट परिस्थितियां आई भी, तभी भी हमें ऐसा लगता है कि कोई है, एक विश्वास होता है कि कोई हमारे साथ है और हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें आज का शब्द है विश्वास।
0: विश्वास, बहुत ही सुंदर शब्द है,
1: जी
0: बहुत ही विश्वास वाला शब्द है
1: जी
0: ये विश्वास।
1: जी यानी हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है ना इस
0: हाँ, एक
1: शब्द के साथ में।
0: पॉजिटिव एनर्जी के
1: जी
0: साथ हम जब जिंदगी में कदम रखते हैं ना, तो
1: जी
0: ये विश्वास शब्द हमारे साथ हमेशा रहता
1: जी
0: है ना।
1: और साड़ियों का संसार
0: आहा, मेखला चादर,
1: आसाम ले चलेंगे सबको।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर साड़ियां हैं वहां की।
1: जी
0: मेखला चादर जब आप पहनते हैं
1: जी
0: तो उसके पहनने का तौर तरीका, उसके पहनने के जो अलग अलग तरीके
1: दो
0: हैं,
1: हिस्सों में होती है वो।
0: हाँ, और वो मतलब एक अलग ही लुक देती है आपको,
1: जी
0: और वहां का जो डिजाइन है, जो प्रिंट है, जो कपड़ा है, वो भी बिल्कुल अलग होता है। एक आप चादर के रूप में लपेटते हैं और दूसरा आप उसको मेखला जिसे कहते हैं
1: कमर में लपेटते
0: कमर में लपेटते हैं, और उसका जो ब्लाउज है वो भी एक अलग ही तरीके की
1: जी
0: आपको इमेज देता है।
1: जी और व्यंजन में साबुत अनाज के व्यंजन यानी प्रोटीन से भरे साबुत अनाज जो होते हैं, ऐसा खासकर कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों की जो थाली में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो ये साबुत अनाज अगर हम अपने व्यंजन में शामिल करें तो प्रोटीन की कमी महसूस नहीं होगी हमें।
0: बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खाना खाते हैं उसमें साबुत दालें खासतौर
1: जी
0: से अगर हम ले लेती हैं तो बहुत हद तक हम इस बात से दूर हो जाती हैं कि हम प्रोटीन इसमें नहीं खाते
1: जी
0: हैं, है
1: और
0: ना।
1: उसके अलग अलग तरह के जब व्यंजन बनाते हैं तब तो फिर वो हमारे स्वाद में और भी बढ़ोतरी होती है।
0: हाँ, खासतौर से हमारे बच्चे जो हर बात पर
1: जी
0: नाक घोंसी कोड़ते हैं और अगर उन्हें साबुत दाल दे दी जाए तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो साबुत दाल के चिल्ले बनाकर, साबुत दाल के अन्य तरीके के
1: जी
0: व्यंजन बनाकर हम उन्हें कम से कम प्रोटीन युक्त भोजन जो है दे
1: दे
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं,
0: और अब हम क्या दे सकते हैं,
1: एक सुंदर सा गीत दे सकते हैं।
0: इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है।
1: सुनते हैं।
0: ये गीत

0: हाँ, तो बहुत ही एक क्लासिक गीत अभी आपने सुनवाया हमें, सोनाली।
1: और हम जो है भैया धरने की बात कर रहे हैं। गाना ऐसा हो गया कि भैया ना धरो, बहुत सुंदर सा गाना हमने सुना सखियों के संग। और जैसे पारिवारिक मिलन समारोह की बात चल रही है मंदाकिनी जी, तो पारिवारिक समारोहों में त्योहार, लोकगीत, पारंपरिक भोजन, पूजा पद्धति, पारिवारिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इससे हमारी परंपराएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि अगली पीढ़ी तक जीवंत रूप से पहुंचती भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे सोनाली कि पारिवारिक मिलन कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में,
1: जी
0: और ये जो समारोह है ये एहसास कराता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, परिवार उसके साथ है, और परिवार उसके सुख में खुशी मनाने के लिए और कठिन समय में उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और यही भावना परिवार को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है।
1: और ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्ते केवल खून से नहीं, समय देने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ बैठकर बातचीत करने का समय ही कम मिलता है। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भरने का सुंदर अवसर बन जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हंसना, बातें करना, साथ साथ भोजन करना, ये सभी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं, और रोजमर्रा के तनाव और व्यस्तताओं से अगर कुछ समय हम निकाल लेते हैं अपने परिवार के साथ तो एक राहत में मिलती है, और एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, व्यक्ति को या हम सभी को भावनात्मक सुरक्षा और संतोष का

0: भी एहसास होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नौकरी के कारण किसी को जो परिवार के सदस्य है उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो कोई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह एक ऐसे अवसर होते हैं जब सभी लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर परिवार के साथ सुखद समय बिताते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब समारोह होते हैं तो हम सब बहुत ही खुशी के साथ उसमें शरीक होते हैं। और एक सफल पारिवारिक मिलन समारोह भी हमें ये संदेश देता है कि परिवार की शक्ति उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से होती है। तो जब परिवार एकजुट रहता है सोनाली, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं।
0: हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं इस विषय पर। हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे भारत में यहाँ बसे पारिवारिक समारोह यानी कि बच्चों का जन्म होना, मुंडन, शादी ब्याह, मृत्यु से लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बना रहता है और सामूहिक सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा होगा कई परिवारों में प्रेम ज्यादा नहीं महसूस करते। हमें लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत कम मिलते जुलते हैं, आपस में कम समारोह में इकट्ठा होते हैं, तो हमें लगता है कि वहां शायद प्रेम कम हो गया है और रिश्ते कहीं कमजोर हो गए हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि उनमें संवाद नहीं हुआ है या एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरियां बढ़ गई हैं, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे को कहने सुनने की जो क्षमता है ना
0: वो कम
1: वो
0: हो
1: कम हो गई है। एक
0: जी,
1: दूसरे को हम शिकायतें तो
0: समझने
1: कर
0: की
1: देते हैं,
0: क्षमता।
1: हाँ
0: हाँ
1: समझ नहीं पाते एक
0: जी।
1: दूसरे को और दूरियां बना लेते हैं।
0: और क्या कैसे होता है ना कि मंदाकिनी जी, कभी कभी ना हम कहते हैं ना जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं
1: हाँ
0: कि वो तो अब जैसे उसके घर की कुछ बातें होंगी कि वो शायद दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसे लगता है कि देखिए उन्हें तो घमंड आ गया है, वो तो हमसे मिलना नहीं चाहते। पर ऐसा नहीं होता है, किसी किसी की परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार के साथ पॉजिटिव रिलेशन होने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप अपनी एंग्जाइटी और चिंताओं को दूर कर पाते हैं और मुसीबत में होने पर आपको सही मार्गदर्शन और सलाह मिल पाती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे घिरे होने पर आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है और चुनौतियों से उभरने के लिए आपको एनर्जी मिल सकती है। बहुत
1: बिल्कुल सही
0: सुंदर
1: कहा, बहुत सुंदर लिखा है। और वहीं
0: जी।
1: एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि पारिवारिक जो बंधन है उससे आप मजबूत होते हैं, बीते सालों की खूबसूरत यादों का सृजन होता है, घर के बुजुर्गों से बच्चों और युवाओं को अपने पूर्वजों से जुड़े पारिवारिक इतिहास के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने भी हमारी पिछले 7 पीढ़ियों तक का वट वृक्ष बनाकर हमारे कंप्यूटर ट्री ऐप पर डाला हुआ है, जिसमें मेरे पोते से लेकर दादा परदादा तक की सारी जानकारियां हमने साझा कर रखी हैं।
0: वही एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बिखरी हुई जड़ों को फिर से सींचने का अवसर है। जहां वर्षों से दूर रहे चेहरे एक ही आंगन में मिलते हैं तो समय जैसे थमसा जाता है। पिता की झुकी हुई पीठ में बचपन का सहारा दिखता है, माँ की आंखों में वही पुरानी ममता लौट आती है और भाई बहनों की हंसी फिर गूंज उठती है। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि नौकरी, शहर और व्यस्तताओं ने हमें कितना भी दूर कर दिया हो, हमारा अस्तित्व आज भी उसी एक थाली, उसी एक कहानी, उसी एक आशीर्वाद से बंधा है, जो अगली पीढ़ी को भी सिखाता है कि परिवार वो अंतिम घर है जहां लौट कर आदमी फिर से पूरा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: कितने
1: बहुत
0: सुंदर,
1: सुंदर
0: बहुत
1: शब्दों में
0: सुंदर
1: कहा।
0: जी
1: काश हम सभी ऐसा समझें,
0: जी
1: सोचें और इस तरह के जो जीवनचर्या बिताएं, तो हमें लगता है कि जो आजकल एकल परिवारों की जो प्रथा चल निकली है
0: जी
1: उसमें बहुत कमी फिर से आने लगेगी,
0: या
1: है ना।
0: उसमें उसमें जो है ना जो सुधार हो जाएगा कि
1: हाँ
0: हम दूर दूर जाने लग गए हैं एक दूसरे से।
1: हाँ हम अकेलेपन के आदी हो गए हैं, हम अकेलेपन में रहना चाहते हैं, मेरा परिवार मेरे बच्चे, जिस तरह की भावना हमने रख ली है, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा परिवार है, हमारे जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वो भी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: और उन्हें भी उस साथ की जरूरत है।
0: और बच्चे भी ना शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, क्योंकि
1: हाँ
0: घर में आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, उनका सब चीज पर्सनल होता है,
1: बिल्कुल
0: उनका खिलौना अलग, उनका बिस्तर अलग, उनका कमरा अलग, उनकी किताबें अलग है। तो जब घर में परिवार के दूसरे लोग आते हैं गेट टुगेदर के बहाने, उस वक्त वो उनकी थाली में खाएंगे, उनके खिलौने खेलेंगे,
1: अपनी
0: तो उन्हें
1: चीजों
0: भी
1: को देना सीखेंगे। जब
0: हाँ
1: आप उन्हें बताएंगे कि बेटा
0: जी
1: आप अपनी चीजें इन्हें भी दे सकते हैं, तो उनके अंदर ये भावना पनपती है कि
0: जी
1: हम मिलजुल कर रहे हैं, है ना।
0: जी
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के कारण अक्सर लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर हो गए हैं। पारिवारिक मिलन समारोह सभी को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर देता है, एक

0: साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना, सुख दुख साझा करना, प्रेम विश्वास सौहार्द, ये सभी बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे अक्सर दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहनों को ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जानने का मौका मिलता है और ये बच्चों में पारिवारिक संस्कारों को विकसित करने का एक बेहतरीन मंच भी है।
1: एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह मैंने शहरों में देखा है, जहां पर हर त्योहार पर लोग एक पार्क में या किसी के घर के लॉन में मिलते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हमारे गांव में दिवाली के अगले दिन अक्सर सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर जो बाहर नौकरी करते हैं वे सब भी परिवार सहित छुट्टी मनाने आते हैं, तो उनसे लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं और बच्चे इनाम भी मांगते हैं। हाँ, दूसरा मौका होली का होता है, जब होली के दिन सारा गांव एक रंग में रंगा होता है और दोपहर के बाद नए कपड़े पहनकर सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं, खिलाते हैं, फाग पर तरह तरह के गीत गाते हैं, पूरा गांव मस्ती में झूमता है। अब तो लोग ऐसे कुछ उन्होंने अलग बातें भी लिखी
0: लिखी है।
1: जी।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी फैमिली में चाचा चाची, उनके लड़के लड़की कुल मिला के 45 लोग हैं।
1: जी
0: हम सब हर साल समर वेकेशन में एक दिन की पिकनिक टूर पर जाते हैं, धार्मिक स्थल, दरिया का किनारा, फार्म हाउस, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं और उस दिन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा टूर होते रहना चाहिए।
1: एक साथी कहते, परिवार हमारी शक्ति है और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। परिवार से ही हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे भारत में तो यहाँ पारिवारिक समारोह बच्चे पैदा होने में, मुंडन, शादी, विवाह, मृत्यु तक बहुत से होते हैं। कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बनता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
1: और अब गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही असम की सांस्कृतिक पहचान मेखला चादर के बारे में।
2: चलते हैं असम की ओर।
0: हाँ बिल्कुल, चलिए।
2: मेखला चादर, असम के इसे मेखला चादोर भी कहते हैं। असम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। इसकी खासियत केवल इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी सदियों पुरानी बुनाई कला और असम के जीवन से जुड़ी परंपराएं भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। और मेखला चादर पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुख्यतः दो हिस्सों से बनकर एक बड़ी सुंदर पोशाक बनती है, मेखला और चादर। तो मेखला इसका निचला हिस्सा होती है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे विशेष ढंग से मोड़कर सामने की ओर इसकी प्लीट्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती है।
2: और चादर जिसे कई बार सादोर या चादोर भी कहा जाता है, इसका ऊपरी हिस्सा है। इसे शरीर के ऊपरी भाग पर लपेटकर कांधे पर यानी कंधे पर रखा जाता है।
0: तो इस तरह दोनों हिस्से मिलकर क्या बनते हैं,
2: मेखला चादर। और मेखला चादर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हस्त बुनाई है। असम में बुनाई के रोजगार का साधन नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा भी रही है।
0: हाँ, और असम की बुनाई में प्रकृति की हमें झलक भी दिखाई देती है। इसमें फूल, पत्तियां, पक्षी, ज्यामिति आकृतियां और पारंपरिक प्रतीक इसके डिजाइनों में नजर आते हैं। इसीलिए हर सुंदर मेखला चादर अपने भीतर बुनकर की कल्पना और मेहनत की कहानी भी कहती है।
2: और मेखला चादर में असम के विभिन्न प्रकार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूंगा सिल्क या इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं। असम का मूंगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है और मूगा सिल्क की मेखला चादर को बहुत प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
0: हाँ, इसके अलावा पाट रेशम मुलायम और चमकदार होता है और उससे बनी मेखला चादर विशेष अवसरों पर खूब पसंद भी की जाती है।
2: साथ ही एरी सिल्क, एरी रेशम को असम की रेशम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट अपेक्षाकृत गर्म और मुलायम होती है।
0: हाँ, और मेखला चादर में रंगों का जो संयोजन है वो बहुत ही सुंदर होता है सोनाली। लाल, क्रीम, सुनहरा, हरा, सफेद और गहरे रंगों के साथ पारंपरिक बॉर्डर बनाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं।
2: और इसके बॉर्डर और पल्लू जैसे हिस्सों पर पारंपरिक असमिया आकृतियां इसकी सुंदरता बढ़ाती है। फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और ज्यामितीय पैटर्न इसकी लोकप्रिय डिजाइन है।
0: हाँ बिल्कुल, और असम का जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है ना, मेखला चादर से गहराई से जुड़ावा भी है ये त्योहार। विशेष रूप से बोहाग बिहू के अवसर पर महिलाएं जो हैं पारंपरिक मेखला चादर पहनती हैं और इस उत्सव में शामिल भी होती हैं। बिहू के गीत हैं, नृत्य हैं और पारंपरिक परिधान जब मिलकर असम की जो संस्कृति है उसकी सुंदर तस्वीर हमारे सामने एक पेश करते हैं।
2: और मेखला चादर का इस्तेमाल विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी किया जाता है। दुल्हन की मेखला चादर पर अक्सर जटिल बुनाई, सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक रूपांकन दिखाई देते हैं।
0: हाँ, और मेखला चादर इसके आधुनिक रूप भी अब आ गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न रूप भी आने लगे हैं जिनमें पारंपरिक बुनाई के साथ नए रंग आ गए हैं, नए डिजाइन आ गए हैं। और ये केवल पारंपरिक अवसरों तक नहीं बल्कि आम प्रोग्राम्स में या डेली रूटीन में भी वहाँ की महिलाएं जो हैं
2: पहन सकती
0: हैं। जो नौकरी में जाती हैं वो महिलाएं भी मेखला चादर पहनती हैं।

0: और वो कॉटन के बने जो मेखला चादर है वो
1: जी,
0: पहनावा में है।
1: मेखला चादर को केवल एक वस्त्र कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा। ये असम की पहचान, लोक कला, बुनकरों की मेहनत और महिलाओं की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। इसके हर धागे में असम की प्रकृति की छाप दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मपुत्र की विशालता, कहीं हरे भरे जंगलों की छटा और कहीं स्थानीय लोक कला की इसमें झलक दिखाई देती है।
0: बिल्कुल। और मेखला चादर असम की एक ऐसी विरासत है जिसमें पहनावे के साथ इतिहास है, कला है, संस्कृति है। और ये केवल शरीर को सजाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है सोनाली, बल्कि असम की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे ले जाने वाली एक जीवंत परंपरा का भी नाम है मेखला चादर। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। और सोनाली, अगर अब आप कहें तो एक गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।

0: तो बहुत ही सुंदर गीत लगा, ऐसा लगा कि हम मेखला चादर पहनकर ये नृत्य कर रहे हैं, है ना।
1: जी, और एक हमारी सखी ने लिखा है कि असम घूमने गई थी, तब वहां की महिलाओं को मेखला पहनते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा। दुकान में हर तरह के मेखला उपलब्ध है, सस्ती भी है और महंगी भी है, कॉटन में, चंदेरी सिल्क में, और ये उनका पारंपरिक ड्रेस है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए तो नहीं, पर किसी ने मुझसे मंगवाया था तो मैं उनके लिए लेकर आई थी। हल्का क्रीम कलर का सिल्क पर रेड बूटी और बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत मेखला थी।
0: क्या बात है, तो आपने खुद के लिए क्यों नहीं खरीदा भाई।
1: हाँ ना, आज बोलती क्या, मेरे पास भी मेखला है।
0: हाँ, ये कहती है ना कि मेखला
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: यहां मैं कहूंगी मेरे पास मेखला है।
1: पर है आपके पास मेखला? अरे वाह, अभी पहनकर आइएगा।
0: बिल्कुल, मैं पहन के आई थी, आपने मुझे नहीं देखा शायद, आप उस दिन नहीं थी
1: ओके।
0: ऑफिस में। और अभी आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी एक यात्रा में कहीं गई थी बाहर, तो मेरी एक दोस्त अचानक स्टेशन पर आई जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, और उन्होंने आते ही मुझे उठाया और बोले, अरे सो रही है, उठ, तेरे लिए मेखला लेकर आई हूँ। हाँ, सच में। तो ऐसा भी होता है कई बार कि जब आप नहीं सोच रहे होते, अनएक्सपेक्टेड उपहार आपको मिल जाते
1: तो
0: हैं।
1: अगले इसमें यही सब्जेक्ट ले लेंगे।
0: कि आपको न चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है
1: सरप्राइज
0: जीवन में, सरप्राइज गिफ्ट मिल
1: गिफ्ट।
0: जाते हैं।
1: जी
0: तो चलिए, हमारे और हमने एक नया आज शब्द लिखा है, विश्वास, ना, उस पर हम बात करने वाले हैं,
1: जी
0: जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शब्द है, भावार्थ लिए, और
1: जी
0: हमारे जीवन में इसका होना बहुत जरूरी है।
1: और ये श्रोताओं का सेगमेंट है, तो श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं
0: हाँ,
1: विश्वास
0: तो
1: पर।
0: उन्हें विश्वास है ना हम पर, कि हम उनके सेगमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे,
1: जी
0: और ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है,
1: जी
0: तो उन्होंने हमारे विश्वास को बनाए रखा है।
1: जी एक साथी कहते हैं, विश्वास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विशेष आस या विश्व आस। विश्व है तो आस है, अगर विश्व में हम आस रखते हैं तो ये बात खास है। संसार में हर कोई चाहता है हर इंसान उस पर विश्वास करे, लेकिन वो दूसरों पर जल्द विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास किसी व्यक्ति, वस्तु, शक्ति या विचार के सत्य, क्षमता और चरित्र पर बिना किसी संदेह पूर्ण भरोसा करने की मानसिक स्थिति है। उदाहरण स्वरूप कहूं तो मंदाकिनी जी और सोनाली बिटिया पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे कमेंट जरूर शामिल करेंगी। ये मानवीय संबंधों की नींव है जो आपसी रिश्तों, समाज और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़कर रखती है। दूसरों की ओर से विश्वास रखने की आस रखने के साथ खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास होना भी
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है, बिल्कुल
1: यस, आई कैन डू इट।
0: बिल्कुल, आत्मविश्वास और विश्वास, ये दो
1: जी
0: शब्द बहुत जरूरी हैं जीवन में,
1: जी
0: खुद पर विश्वास होना और दूसरों पर भी विश्वास करना।
1: जी
0: हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए,
1: जी
0: है ना, उससे हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए, लेकिन विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि शब्द हमारे विचार आपके में, कितना सुंदर आपने शब्द चुना है, विश्वास। विविध भारती के शब्द जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं तो उनके विचारों से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं, कभी कोई गीत याद बन जाता है, कभी कोई बात दिल को छू जाती है, बस यही तो विविध भारती की खासियत है, आवाज आपकी और लिखा हुआ हमारा, जब दोनों मिलकर कुछ पढ़ते हैं तो कुछ मस्त सा रचते भी हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वासम फलदायकम, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ यह है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक और परिणाम देने वाला होता है, खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
1: एक साथी कहते, विश्वास एक नींव की तरह होता है जिस पर हमारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इंसान के सभी कार्यकलाप, लेन देन, आपसी व्यवहार विश्वास के सहारे चलते हैं। घर में माता पिता को अपनी संतान पर विश्वास रहता है कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे। दुकानदार भी पैसे बाद में आ जाएंगे के विश्वास पर ग्राहक को सामान उधार दे देता है। बिल पर जो भूल चूक लेनी देनी वाक्य लिखा होता है, व्यापारी और ग्राहक के आपसी विश्वास की लिखित गारंटी होती है। बैंक में, नौकरी में तो हर व्यवहार विश्वास के आधार पर ही होता है। सच भी यह है कि विश्वासघात भी वही होता है जहां विश्वास होता है। विश्वास के मामले में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला
0: घटी
1: सिद्धांत लागू होता है।
0: जी,
1: किसी पर इतना भी विश्वास न करें कि बाद में पछताना पड़े, और नहीं इतना अविश्वास दिखाए कि आप अपनी ही विश्वसनीयता खो बैठे।
0: बहुत
1: कितना
0: सुंदर,
1: सुंदर उदाहरण
0: बहुत
1: देखिए लिखा
0: सुंदर,
1: है।
0: बहुत सुंदर, कि आप धोखा भी न खाएं और अविश्वास

0: विश्वास भी न करें,
1: जी
0: मतलब कितनी महीन रेखा है ना हर रिश्ते के बीच
1: बीच
0: में
1: में
0: जो हमें मेंटेन रखनी होती है,
1: जी
0: बैलेंस बनाकर जीवन में चलना
1: जी
0: पड़ता
1: और
0: है,
1: जो बैलेंस बना के रखता है उसका जीवन सफल होता
0: सफल
1: है
0: होता है।
1: जी
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे वो माता पिता, बच्चों का हो, मित्रों का हो, व्यापार का हो, सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास की जो कमी होती है, वो आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास सामाजिक जीवन को सुखमय बना देता है।
1: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक ऐसा अदृश्य धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखता है। इसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी हर रिश्ते में महसूस होती है। जहां विश्वास होता है वह शब्द कम और भावनाएं अधिक बोलती है। विश्वास पाने में समय लगता है, लेकिन इसे खोने में एक पल भी काफी होता है।
0: बिल्कुल
1: इसलिए कि किसी के विश्वास को जीतना जितना महत्वपूर्ण होता है, उसे निभाना उससे भी अधिक जरूरी है।
0: बिल्कुल सही
1: कितना, यानी
0: कहा,
1: कहते हैं ना,
0: बहुत सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखा
1: पूरे
0: है,
1: जीवन का सार ही लिख दिया।
0: सार लिख दिया है कि वाकई हम विश्वास जमाते हैं ना सोनाली, पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी पर
1: सचमुच।
0: विश्वास
1: हाँ
0: बनाते, 1 सेकंड लगता है उस विश्वास को तोड़ने में,
1: टूटने
0: है ना,
1: में जी
0: टूटने में, तोड़ने में
1: जी
0: आप 1 सेकंड लगाते हैं। तो
1: जी
0: ये कितना रिश्तों में सोचिए कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता
1: जी
0: है।
1: एक साथी कहते हैं, एक विश्वास ही है जो एक बार टूट जाए तो जीवन भर नहीं जुड़ता, इसलिए सावधान रहे, इसे कभी टूटने न दे।
0: सबसे बड़ी बात यह है, एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास वो अद्भुत और अलौकिक अदृश्य धागे की डोर है जो हमें बांधती है, जिसके हम विश्वास पात्र होते हैं, और इस धागे में जब स्नेह, सद्भाव और प्रेम का मांझा चढ़ता है, फिर तो दो हृदय नहीं अभी तो उनसे अनुस्यूत समस्त विश्व की दुख दारिद्र्य से रहित हो जाए, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए।
1: और अब गीत सुन ले एक।
0: गीत सुन लेते हैं, हमारे श्रोताओं का भी तो हम पर विश्वास है
1: हाँ, कि गीत
0: ना।
1: सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो सोनाली, हमारे श्रोताओं ने विश्वास जैसे शब्द पर बहुत अपने सुंदर विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास एक ऐसा चमत्कारी शब्द है, ये अगर किसी इंसान के पास हो तो वो उस इंसान को खाक से उठाकर फलक पर बैठा देता है। वो इंसान असंभव को संभव कर सकता है। पहला अटूट विश्वास परम पिता परमेश्वर पर, माता रानी पर, दूसरा अटूट विश्वास खुद पर। और मैंने इसी अटूट विश्वास से जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी का विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है, तो मैं उनको हौसला बढ़ाता हूँ ये बताने पर, आज जरूर घर पर धर्मपत्नी की डांट सुननी भी पड़ सकती है।
1: जी, एक साथी कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, मित्रों संबंध हो या व्यापार हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे बहुत सारे श्रोता विश्वास जैसे शब्द पर अपने विचार लगातार हम पर भेज रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं वही जो कि विश्वास एक नींव की तरह है जिसे हमारे सामाजिक और व्यवसायिक रिश्तों की इमारत भी खड़ी होती है, और इंसान के सभी कार्यकलाप लेन देन आपसी व्यवहार विश्वास के सारे ही चलते हैं।
1: एक साथी कहते हैं विश्वासम फलदायकम एक प्रसिद्ध सूक्ति है, जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक या परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल मिलती है, और यही विश्वास है जो सखी सहेली के मंच पर हम कायम रखते हैं, हमारे सखी और सखाओं के साथ विश्वास बनाए रखते हैं और वो भी अपने विश्वास पर पूरा खरा उतरते हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए,
1: सुनते हैं
0: और फिर क्या करेंगे हम
1: व्यंजन की ओर बढ़ेंगे।

0: मंदाकिनी जी, हमारे एक सखा मित्र, उन्होंने लिखा है कि मैं करीब 25 सालों से विविध भारती सुन रहा हूँ और विविध भारती से जुड़ा हूँ। आपने जो हमारे आसाम के मेखला चादर के बारे में विस्तार से जानकारी दी सारे सखियों को, मुझे बहुत अच्छा
1: अरे वाह, अभी उससे
0: लगा।
1: पहले भी सोनाली आप बता रही थी कि काफी लोग आसाम से सुन रहे हैं आज
0: जी
1: कार्यक्रम,
0: हाँ
1: और मेखला चादर पर हमने बातचीत की है तो वो काफी खुश भी हैं।
0: जी
1: अच्छा भी लगता है ना जब हम
0: हाँ
1: अपने प्रांत की कोई चीज, वेशभूषा या
0: या
1: खान
0: व्यंजन।
1: पान, हाँ, पर बातचीत सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है ना।
0: और एक, जैसे साबुत अनाज की बात चली है तो हमारे एक सखी ने लिखा है कि साबुत अनाज से सबसे जो पौष्टिक है ना, उसमें थोड़े से हरे मूंग या काले चने भिगा दे और उसका पानी निकाल दे, और अंकुरित हो गए फिर उसमें प्याज, नमक, ककड़ी, टमाटर, नींबू मिलाकर मस्त सा सलाद बनाकर खाए। या फिर ऐसे ही खाए, हमने तो मस्ती में लिख दिया, पता ही नहीं आप पढ़ेंगी या नहीं
1: अरे
0: पढ़ेंगी।
1: देखिए, आपने मस्ती में लिखा और हमने इसको गंभीरता से ले भी लिया है ना कि भाई ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम रोजमर्रा की रूटीन के खान पान में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा
0: जी
1: अगर हम नहीं बना सकते साबुत अनाज का कोई व्यंजन तो हम इसे तो कम से कम शामिल कर ही
0: और
1: सकते
0: इसे
1: हैं।
0: बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बस
1: हाँ,
0: उसे रात को भिगोना है हमें।
1: और सुबह ककड़ी और प्याज, टमाटर, धनिया डाल के उसको बना के हल्का बॉईल करके आप खा सकते हैं। नमक और काली मिर्च डालकर भी
0: और
1: खा
0: अगर वो
1: सकते हैं।
0: बच गए तो उसको पीस लिया, उसके चीले बन
1: चीले
0: गए।
1: बन गई, क्या बात है। तो एक श्रोता लिखते हैं कि होल ग्रेन दलिया को, यानी साबुत गेहूं का जो दलिया है, दूध या सब्जियों के साथ पकाकर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार किया जाता है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मसालों, ओट्स, ओटमील, साबुत जई को पानी या छाछ में सब्जियों के साथ उबालकर तीखा या नमकीन दलिया भी बनाया जा सकता है। और ओट्स को पीसकर उसमें बेसन, हरी मिर्च और सब्जियां मिलाकर तवे पर चीला बनाएं तो एक झटपट हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो सकता है।
0: साथ ही रागी या मड़ुआ भी कहते हैं इसके डोसे, लड्डू। रागी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। इसके आटे से बने कुरकुरी डोसे, कम घी, गुड़ वाले लड्डू भी बड़े चाव से खाए जाते हैं। वैसे ही ज्वार की रोटी। सर्दियों के मौसम में साबुत अनाज का खिचड़ा, यानी जो ज्वारी है या फिर बाजरा है, इसका खिचड़ा कहते हैं। इसे खिचड़ी की तरह बनाया जाता है, उसे खिचड़ा कहते हैं। और गरम गरम इसकी रोटी भी बनाई जाती है, बाजरा और ज्वार की, और इसे गुड़ और मक्खन के साथ परोसा जाता है।
1: बिल्कुल, जब खिचड़ी की बात चली है ना तो हमारे राजस्थान में देखा जाता है कि एक अंगीठी पे, बड़े पतीले पर, इसको पानी में डालकर साबुत अनाज को पकाने छोड़ दिया जाता है। वो धीरे धीरे पकता रहता है,
0: धीरे
1: पकता
0: धीरे
1: रहता है
0: पकता है।
1: घंटों।
0: हाँ
1: फिर उसमें नमक और देसी घी डालकर वो लोग खाते हैं, तो देसी भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और काफी ताकतवर होता है
0: बहुत
1: ये।
0: ताकत होती है। बचपन में यही सब चीजें खा खा के हम लोग, यानी जो बड़े
1: हाँ,
0: बुजुर्ग है ना, ताकतवान बने
1: और
0: थे।
1: इसके साथ वो दही या छाछ का प्रयोग भी करते हैं। हमने देखा हमारे पड़ोसी लोगों को कि वो एक बड़ा डोलू भरकर छाछ उसमें डाल के और उस खिचड़ी का सेवन करते थे, तो बाकी वो गायों का काम करते थे तो उनकी शक्ति देखने लायक होती थी।
0: जी, एक साथ ही कहते हैं कि साबुत अनाज के व्यंजनों के में बाजरे के आटे के लड्डू बड़े ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं, और बिल्कुल गेहूं के आटे के लड्डू की तरह ही बनाए जाते हैं। बस इसमें गुड़ डाला जाता है, तो गुड़ तो डालना ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, गुड़ डाल दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक लिखते हैं, साबुत गेहूं का दलिया आप बना सकते हैं और पाचन के लिए अच्छा है। और ज्वार की रोटी के बारे में भी लोगों ने काफी कुछ लिखा है। एक लिखते हैं, भिगोए हुए इन साबुत अनाजों को आप थोड़ा थोड़ा मोटा दरदरा पीस लें और इन्हें हींग, नमक, हरी मिर्च बारीक काट कर मिला लें। अब इसके छोटे छोटे टिकिया बनाकर या तेल लगे ट्रे या थाली में लगाकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे चकोर टुकड़े काट लें, या इन टिकियाओं का जो स्टीम है किया गया है उन्हें आप सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये ऊपर से कुरकुरे और भीतर से सॉफ्ट होते हैं, इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन्हें ज्यादातर आप भाप दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: और अच्छी मजेदार सी चटनी बना लो तो भाप वाले भी बिना तले बिना भुने वैसे ही अच्छे
1: बहुत
0: लगते।
1: अच्छे लगते हैं क्योंकि डीप फ्राई अगर आप रोज खाएंगे तो फिर वो नुकसान करने लगता है। और साथ में

0: कह रहे हैं कि प्याज टमाटर ग्रेवी डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि साबुत अनाज के मूंग के लड्डू, एक कटोरी खड़ा मूंग ले, उसे अच्छे से धोकर एक सूखी कढ़ाई में भून ले, और जब मूंग लाल हो जाए तो धीमी आंच करके जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस ले, छान ले, फिर आधा कटोरी शुद्ध घी में मूंग के आटे को 10 मिनट तक भूने, और बाद में एक कटोरी पीसी चीनी और अपने मनपसंद सूखे मेवे डालकर लड्डू बांध ले। लड्डू बांधते समय घी कम लगे तो थोड़ा घी और डाल दे, अपने स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो सकते हैं। साथ ही चना जोर गरम भी बना सकते हैं ना हम, कि काबुली चने को भिगो के उबाल लिया और बस उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा दबा लिया, प्रेस कर लिया उसे,
0: ठीक
1: चपटा
0: है।
1: चपटा कर लिया, और बस उसमें सारे प्याज टमाटर डाल के और उसमें चाट मसाला डाल के, और वैसे ही खा सकते हैं नाश्ते में। उसको तलते भी हैं और कुछ कुछ लोग सेक लेते
0: सीख
1: हैं।
0: ले, वो जैसा आपको पसंद हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खा रहे हैं तो ज्यादातर उसको डीप फ्राई नहीं करें,
1: जी
0: है ना। तो आज तो बहुत शानदार और जानदार रेसिपी हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी, और हम उम्मीद करते हैं घर पे बना के खाने वाले हम सभी, है ना।
1: जी
0: और अब
1: और
0: एक गाना सुन ले।
1: जी।

0: मंदाकिनी जी, हमारी एक सखी लिखती है कि हमने मेखला पहनकर स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी और वहां से एक आसामी रेशम सिल्क की साड़ी भर लेकर ले आए थे, और एक सखी ने कहा कि हमने मेखला नहीं खरीदी पर हमने आसाम सिल्क की साड़ी भी खरीदी थी और फोटो खिंचवाई, तो हमेशा के लिए वो जो हंसता हुआ नूरानी
1: नूरानी चेहरा था वो कैद हो गया है।
0: चेहरा
1: और यकीनन सोनाली, तुम्हारी खूबसूरती पता है क्या है? तुम्हारा ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही।
0: और आपका भी
1: ये तो एक दूसरे की तारीफ करना हो गया। हमारे सखी और सखा कहेंगे कि सोनाली और मंदाकिनी बस एक दूसरे की
0: की
1: तारीफ ही
0: तारीफ,
1: करती है।
0: हम श्रोताओं की भी तारीफ करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं
1: बिल्कुल
0: कि आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल, और उन्होंने हमें हंसने पर मजबूर भी कर दिया।
0: जी
1: तो चलिए, वो चाहे मेखला चादर पहने या किसी भी प्रांत का कोई

0: भी आप वस्त्र पहने,
1: जी
0: लेकिन आपका चेहरा हमेशा हंसमुख होना चाहिए और
1: खिलता मुस्कुराता
0: होता
1: रहना
0: है,
1: चाहिए
0: तो
1: जी।
0: हंसी और हंसाइए। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली
0: सोनाली को
1: पाठक को दीजिए
0: इजाजत,
1: इजाजत,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: कार्यक्रम।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के मेहमान कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों कार्टून और कार्टूनिस्ट कला के ऐसे पहलू हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। बेजान रंगों और साधारण रेखाओं में जान फूंक कर जो दुनिया को हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा जाए, वही असली कार्टून है और उसे बनाने वाला कार्टूनिस्ट। तो विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे ही शख्स को, ऐसी ही शख्सियत को, ऐसे ही मेहमान को आमंत्रित किया है जो कार्टूनिस्ट हैं और अपनी इस कला से हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और हंसाते भी हैं। तो आप हैं जाने माने कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: मंदाकिनी जी, आपको ही मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
3: और विविध भारती के असंख्य श्रोता जिन्हें हम बचपन से देखते सुनते प्रेम करते आ रहे हैं,
2: जी
3: उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम
2: जी।
3: और आपका बहुत अभिनंदन है।
2: विविध भारती में आके आपको कैसा लग रहा है?
3: मुझे विविध भारती में आकर अपने एक पुराने चिर स्वप्न को पूरे होने जैसा लग रहा है। मैंने शुरू से विविध भारती को सुना, इसके साथ ही सांसें ली और मेरे क्रिएशन के बहुत सारे जो लम्हे हैं वो विविध भारती के साथ ही बीते हैं।
2: जी जी
3: शुरू से इसके सारे कार्यक्रम वंदन वार से लेकर हवा महल और
2: अच्छा,
3: छाया गीत,
2: क्या बात
3: ये
2: है?
3: सभी देखते सुनते और ये साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा। तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
2: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
3: जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल।
2: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी, धूप छांव। आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
3: जी हाँ जी।
2: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
3: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की, ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह के ये रचनाएं, ऐसी कविताएं लेख लिखते

0: थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत का सिलसिला ऐसे जमा कि आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी
1: जी
0: हर संडे, तो उस वहां जाने का एक लिंक बना और मैं वहां पर जाने लगा नियमित। और वहां मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहां जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: हाँ हाँ
0: तो वो अपन प्रसारित करेंगे।
1: हाँ
0: तो रेडियो कार्टून जो है उनके उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया। तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी दो तीन कड़ियां प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युववाणी में तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी
1: अरे वाह
0: और बस ये रुचि बढ़ती गई,
1: जी
0: सिलसिला चलता गया।
1: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी, जो
0: जी
1: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर
0: बस
1: निकली।
0: बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून्स में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत कुछ
0: तो
1: गागर में सागर का काम करता
0: हाँ
1: है वो।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
1: जी, तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन-किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में।
0: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसे बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए। और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुंचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीजों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, घटनाओं पर नजर रखना। तो ऑब्जर्वेशन और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं, क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताजा खबर उस पे बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से अपनी
1: जी
0: भाषा से,
1: जी
0: उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून
1: बहुत
0: में।
1: बहुत गहरी बात कह दी आपने
0: जी
1: देवेंद्र जी, कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
0: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे दरवाजों पे सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था
1: अच्छा,
0: क्योंकि छोटे थे
1: तो घर की
0: तो
1: दीवारें आपने खराब
0: घर
1: कर
0: की दीवारें
1: दी।
0: बहुत खराब करते थे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए।
1: अच्छा।
0: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो तो ये छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई, तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में। तो वहां संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
1: अरे क्या बात
0: तो
1: है।
0: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता
1: हाँ
0: है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: तो
1: 12 साल का
0: उन्होंने,
1: बच्चा है,
0: हाँ
1: उसका
0: वही
1: दिमाग
0: है,
1: यही होगा।
0: तो उन्होंने यही कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले,
1: हाँ,
0: उनको तुम्हें देखना है और उन्हें बहुत ज्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है। और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही है तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना
1: जी
0: है
1: जी
0: और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है
1: अच्छा
0: और उनकी जो पत्नी देवी है वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही है, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही है चांद की
1: जी
0: तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है। उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
1: जी
0: था।
1: जी
0: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था।
1: जी तो बहुत

0: अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया।
1: जी
0: जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्टून का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम,
1: जी
0: बताइए।
1: पहला गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है। आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा। जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीजों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नजर में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा।
0: जी
1: हम नई चीजों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद 1-1.5 साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है, प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झलके के जाने कि एक गमला रखा है, या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है, या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है। तो ये सब
0: जी, ये सभी
1: तो
0: चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं
1: जी हाँ,
0: जब हम
1: बिल्कुल
0: इन
1: बिल्कुल,
0: कार्टून्स पर नजर डालते हैं, तो
1: ये
0: मतलब वो
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही है।
0: पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता
1: हाँ,
0: है।
1: कहता है कई बार उसे जो संवाद, मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते
0: जी
1: है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है, तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा।

0: जी
1: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
0: कागज और कैनवास जब खाली होता है, पहले तो विचार आता है, उसके बाद कागज आता है। और
1: अच्छा
0: वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर, आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को
1: बहुत सुंदर।
0: मैं।
1: जी जी जी तो हर
0: तो
1: दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
0: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं, तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन में ही तो निकलनी है।
1: बिल्कुल
0: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है, उसमें जब मेरी एंट्री हुई, तो वहां पर यही था कि जब शुरू शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे। थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे। फिर पहुंच गए तो उन्होंने हंस के कहा, श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप
1: अरे
0: पाएंगे। तो
1: अच्छा
0: आप थोड़ा आहिस्ता। तो मैंने कहा
1: मतलब आप इतनी तेजी से इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में कार्टून
0: जी
1: बना
0: हाँ जी
1: लेते हैं।
0: हाँ, मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका मतलब है हाईएस्ट जो
1: सेवनटीन
0: रिकॉर्ड, हाँ
1: 17 कार्टून
0: रिकॉर्ड
1: आप एक दिन में
0: है,
1: बना
0: एक दिन
1: लेते
0: में
1: हैं।
0: बनाने का रिकॉर्ड है। मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, तो कल से शुरुआत। मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं। तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम है वो, तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की, फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून, 12 सिंह राशि का हमने बना दिया। चपरासी आया, झट लेके अंदर पहुंचा, वो मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया। इस तरह से ये सब
1: अरे वाह
0: कार्टून्स।
1: बहुत सुंदर। तो आपके
0: तो
1: विषय क्या रहते हैं इन कार्टून्स के? हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
0: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, ये सब खबरें अखबार की, या जो बाहर की जो हम घटनाएं
1: सामाजिक
0: देखते
1: विषय
0: हैं, हाँ
1: हैं,
0: सामाजिक
1: राजनीतिक
0: विषय
1: विषय
0: होते
1: हैं।
0: हैं, राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं। और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज्यादा दुरूह और जटिल ना हो,
1: हाँ
0: और इतने भी सिंपलिसिटी उनमें ऐसे भी ना हो कि सड़क छाप नजर आए,
1: जी,
0: वो चीजें
1: वो
0: हैं।
1: मतलब चुटकुला भी न लगे कि कहीं
0: हाँ
1: आप
0: वो
1: किसी
0: भी
1: जोक को सुना रहे हैं ना, ऐसा भी न
0: बिल्कुल
1: लगना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जोक्स
0: ना,
1: नहीं है, क्योंकि ये एक बारीक अंतर है जोक्स और कार्टून के मध्य
0: कार्टून्स में
1: कि
0: बिल्कुल सही
1: कार्टून
0: है,
1: कला क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो कई बार
0: बिल्कुल
1: ऐसा भी होता होगा देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप एक दिन में 17 कार्टून्स बना लेते हैं या लगातार बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, कभी ऐसा आया कि दिमाग खराब है या गुस्सा है या परेशान है और कोई विचार सूझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति कभी आई आपके सामने?
0: ऐसी आ सकती थी, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने मुझे शाप देकर भेजा है, यानी कि घर में आप समझ लीजिए कि बुरी से बुरी दुर्घटना ऐसी कोई हुई हो,
1: हाँ
0: जबकि हमारे यहाँ पर नानी हमारी नहीं रही उस दौर में भी, और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए, और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बत्ती जलती है, और आप वही चीज बनाकर आते हैं, और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है, जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है ईश्वर ने सौंपा है तो करना है, वो बात है। और
1: बहुत
0: उसको
1: बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के
0: जी
1: प्रति।
0: हाँ बिल्कुल
1: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर के समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है जहां,
0: हाँ
1: ऐसे
0: बिल्कुल
1: में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
0: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है, और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफी है, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है, ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है वो रिलैक्स हो जाता है, तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है, क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है।

0: है, ताजगी मिलती है, वो कार्टून की ही देन होती है।
1: यानी
0: और
1: आज भी इसकी उपयोगिता वही
0: उपयोगिता
1: है जो
0: इसकी
1: पहले हुआ
0: बिल्कुल
1: करती
0: बिल्कुल
1: थी।
0: बनी हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: जी
0: और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा है, या किसी चूहे
1: जी
0: को हंसते नहीं देखा है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए
0: हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है,
1: या व्यंग्य?
0: और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रहा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है। तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है, जैसे कि कोई समस्या है मान लीजिए, उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है, और उस शुष्क भी होता है वो,
1: जी
0: लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा और बात रहेगी वही, लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग
1: बिल्कुल
0: हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे,
1: जी
0: और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहां जानी है वो पहुंच भी
1: चली भी
0: जाएगी,
1: जाती
0: बस
1: है।
0: पहुंच
1: बिल्कुल
0: जाता।
1: सही कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून्स। तो
0: हाँ वो
1: एक
0: तो
1: दो
0: है।
1: अपने कार्टून्स के बारे में बताइए आप, कि जहां आपको लगा होगी मैंने इसमें हास्य और व्यंग्य का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
0: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी, तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब वो हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर
1: जी
0: मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ दूं।
1: जी
0: तो नेताजी ने क्या किया, ये तीन फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उनने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं, और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो पर इसको छोड़ूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं। तो ये
1: जी
0: एक वृत्ति की तरह हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
1: कह दी। तो
0: जी
1: चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
0: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे SB बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस
1: बस
0: वही
1: यही
0: प्यार
1: प्यार
0: है।
1: है,
0: हाँ
1: बहुत सुंदर और
0: जी
1: गहरा गीत है,
0: जी
1: एक दार्शनिक गीत है। कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: सुंदर।
0: सच

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स हैं जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज हो
0: शुक्रिया।
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए
0: अरे वाह,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही
1: और
0: क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये
1: तो
0: एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: वो लेखक
1: बिल्कुल
0: है, चाहे कार्टूनिस्ट है,
1: हाँ,
0: या वो
1: बस
0: सिंगर है, कोई भी कलाकार हो
1: बहुत थोड़ी
0: सकता
1: सी
0: है।
1: रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कंप्लीट, बस ये है।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को पहले?
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत जरूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को जरूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहां तक पहुंचेगी।
0: सबसे बड़ी
1: तो
0: बात ये
1: हाँ, ये
0: है,
1: बहुत जरूरी है,
0: मतलब
1: खुश
0: दिमाग की
1: होना
0: खिड़कियां खुली होनी चाहिए।
1: खुली होनी चाहिए, बिल्कुल।

0: ये उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं
1: हाँ, सबसे
0: चलता
1: बड़ी बात यह है कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना
0: हाँ
1: पड़ता है।
0: वैसा बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो
0: हाँ
1: वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
0: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल पेन ब्रश ये सब चीजें होती हैं, और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए कर रहे हैं,
1: प्रोफेशनली जब आप
0: हाँ
1: काम
0: जब कर
1: कर
0: रहे
1: रहे
0: हैं,
1: हैं।
0: उस वक्त में जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा, ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज है।
1: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं।
0: जी
1: क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है? थोड़ा
0: बिल्कुल होती है, और सीमा
1: हमें
0: रेखा
1: बताइए किस तरह की ये लाइन होती है, क्राइटेरिया
0: ये,
1: जिसे हम कहते हैं
0: हाँ
1: एक।
0: ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए, वही कार्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीजों को लेकर मेंटेन करते हुए, और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले। और हम कहते हैं ना कि जैसे हास परिहास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उपहास करना वो चीज बहुत बुरी है, तो कार्टून में इन चीजों से बचा जाता है, तो बचना चाहिए।
1: ये एक सीमा रेखा है
0: हाँ
1: आपके
0: ये
1: सामने।
0: सीमा रेखा है, किसी
1: हाथ
0: का असम्मान भी ना हो किसी का, ये चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कार्टून में भाषा, किस तरह की भाषा आप ले रहे हैं वो भी देखना है, कि कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट ना हो और बहुत चलता हो लैंग्वेज भी ना हो, और कार्टून का जो कैप्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत ज्यादा विस्तार भी उसमें ना हो, ये सब चीजें हैं। एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं मिलती रही, शुरू में बहुत मिली, अच्छी ज्यादा मिली, जिनसे कि इंसान प्रोत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। आपने बालकवि बैरागी जी का नाम सुना होगा,
1: जी
0: है ना,
1: जी जी
0: सुप्रसिद्ध गीतकार
1: बिल्कुल।
0: और सांसद।
1: अरे
0: तो बालकवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने, वो कार्टून अप्रिशिएट भी बहुत हुआ था, और बालकवि जी का मुझे पत्र मिला,
1: जी
0: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
1: अच्छा।
0: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है,
1: हाँ।
0: और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है,
1: अरे
0: मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
1: क्या बात है सर, क्या बात
0: हाँ
1: है, बहुत सुंदर। वो तो बाल कवि बैरागी साहब,
0: बिल्कुल
1: बैरागी साहब आपको ये बात कह रहे हैं, और
0: बिल्कुल,
1: देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है।
1: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विधा है, बहुत गहरी विधा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार भी
0: देखते
1: पढ़ते,
0: हैं
1: देखते,
0: आप,
1: सुनते हैं और
0: बिल्कुल
1: सराहते हैं।
0: सही बात है।
1: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं
0: बस
1: आगे
0: यहाँ
1: बढ़ते
0: बालकवि
1: हैं।
0: बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा,
1: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
0: तू चंदा मैं
1: मैं
0: चांदनी।
1: चांदनी। आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें, जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया एक कार्टून याद आ रहा है मुझे
0: बताइए।
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये,
0: जी
1: कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे
0: हाँ
1: पैर।
0: हाँ
1: तो कहता दादाजी मैं भी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली,
0: हाँ
1: आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर
0: हाँ
1: सिकोड़ के।
0: हाँ
1: आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके
0: वाह,
1: बाद उस काम को पूरा करो।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था,
0: जी
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है,
0: जी
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध,
0: गंध।
1: मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और
0: ओहो,
1: इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है,
1: हाँ जी
0: मनोविज्ञान क्या होता है
1: हाँ।
0: किशोर

0: बचपन का वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर।
1: नहीं
0: एक
1: वो
0: साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं, क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है, ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज है,
0: जी
1: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए। तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया, और विचार के बाद में जैसे, हाँ, आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था
0: जी
1: कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता है और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकंड थॉट, फाइनल थॉट, ऐसे करके। तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीजें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं, ये चीज बढ़िया है और ये आगे
0: जी
1: बढ़ना चाहिए ये,
0: जी बहुत सुंदर, बिल्कुल यही
1: ऐसे
0: काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए तो फिर
1: पहले
0: वहीं
1: विचार।
0: खड़े रह जाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: बस बस
0: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
1: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
0: विचार बदला होगा, सोच
1: विचार
0: बदली
1: भी
0: होगी।
1: बदला है, और मैं विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना, एक गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है, अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, तो उसका मजा आता
0: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको
1: है।
0: याद हो, आपका बनाया हुआ?
1: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेन्स लिब का जो चला था, शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है, और प्याज और है ना मिर्ची, ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा चल रही है उसको बैठे हुए, है ना, कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे
0: जी
1: की झलक
0: जी
1: मिली।
0: जी
1: अब उसके बाद वो सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है, ये मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के उसकी दासता से मुक्त कराएं, पुरुष की दासता से। तो ये ऐसी चीजें
0: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा
1: हैं।
0: आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने
1: हाँ,
0: बताई, कि
1: बस बस
0: जो
1: बस।
0: ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है,
1: अनुभव कर रही है।
0: आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को
1: जी
0: नहीं जान पा रही है और उसको दास्ता बता रही है।
1: हाँ, तो ये जो विसंगति है, बस इसको
0: हाँ
1: ये उसमें दिखाने की कोशिश
0: बहुत
1: रही है।
0: सुंदर, बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
1: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं, ये इनका
0: 60,000 से ऊपर
1: से
0: कार्टून आप
1: ऊपर
0: बना चुके हैं
1: हैं।
0: अब
1: जी
0: तक,
1: जी जी जी
0: और
1: इनका
0: ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
1: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते अभी, मेरे तो करीब 6-7 व्यंग्य संकलन ही निकले हैं, बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
0: अरे वाह,
1: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
0: अच्छा, तो साठ
1: तो
0: हजार कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं,
1: जी,
0: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए, और
1: आ
0: ना
1: ही
0: जाने अभी
1: गए।
0: कितने विचार और आने हैं।
1: बिल्कुल
0: कमाल,
1: सही बात है।
0: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात, मतलब
1: हाँ
0: 60,000
1: कि,
0: कार्टून
1: हाँ
0: कोई छोटी मोटी बात नहीं
1: जी,
0: है
1: हाँ
0: ना? 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम
1: हाँ
0: सुनते ही हैं 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
1: हाँ जी
0: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं,
1: जी
0: एक गीत सुन लेते हैं, गीत बताइए।
1: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
0: बहुत सुंदर गीत है ये,
1: हाँ,
0: आपकी
1: अमित
0: आवाज
1: कुमार
0: में।
1: और आशा भोसले जी की आवाज है।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं
1: जी।
0: आपकी पसंद का ये।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और
1: जी।
0: उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की। तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी। वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था। वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी। तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर, एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी, मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो वो बोलती है कि नहीं, जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये वो, इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले, अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले, आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले, अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता है और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल।
1: ऐसी, इस
0: ये एक
1: तरह से
0: सीरीज लंबी
1: ये
0: चली है
1: सीरीज
0: फिर।
1: लंबी चली थी, हर हफ्ते
0: लोगों ने
1: उसमें
0: काफी पसंद किया,
1: बहुत बहुत
0: खासतौर से
1: पसंद किया।
0: महिलाओं ने।
1: जी जी जी
0: तो क्या महिलाओं के खत आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए?

0: कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं।
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल। और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था, उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी। उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया वो किया, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब करते
0: बिल्कुल
1: थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है। ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी, तो ये
1: हाँ,
0: निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं। तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूँ क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए, मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो भावताव होना, ये सब चीजें, तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है, और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं

0: जाता है और कहाँ कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें। और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें। और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की जरूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की जरूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी। आपके आदर्श कौन है? आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है, कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे? किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं,
0: जी
1: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है
0: अच्छा
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिता ही नजर आते हैं।
0: जी जी
1: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां
0: जी
1: पर,
0: जी
1: और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफी हर चीज में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं। एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके
0: चहेते
1: प्रेरणा
0: हैं
1: स्रोत हाँ
0: जी
1: चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी, वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं। तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं, उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं, और वहां के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
0: वहां विविधता नहीं
1: हाँ
0: है,
1: उतनी नहीं
0: लेकिन
1: है,
0: लोगों में जागरूकता बहुत है,
1: जागरूकता बहुत है।
0: आम आदमी से जुड़े हैं वो कार्टून।
1: हाँ हाँ
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं।
1: नहीं होते हैं तो जैसे हम बता देंगे हमारी फिल्मों में और वहां की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीजें, तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की है तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद, और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
0: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रही हो?
1: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं, और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए,
0: बिल्कुल
1: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो 12 मासी है। तो उन चीजों को लेकर कि रिश्ते ना टूटे, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीजें एक बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को, तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज में इसे तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो, और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें
0: जी
1: सुधार में,
0: जी बहुत
1: ये
0: सुंदर,
1: बात है।
0: बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि
1: जी
0: माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं,
1: हाँ
0: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना, सहेजना बहुत जरूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं, स्वागत है, और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी।

0: की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।
1: आज के मेहमान।

0: हाय नी आपा फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे।
1: दोस्ती मिलाप दी उदाहरण है, दुश्मनी विछोड़े दी मिसाल है। असी अपने दोस्तां बारे डूंघाई नाल नहीं सोचदे, क्योंकि डूंघाई नाल सोचण विच नफे नुकसान दी बिरती हुंदी है। दोस्ती इस बिरती तों मुक्त होके संभव हुंदी है। वफादारी दे अर्थ वड्डी मुसीबत विच वफादार रहण तों ने। कर भावे कोई कुछ ना सके, पर करन दी भावना वफादारी दी सूचक हुंदी है। श्रोतियो, मेहरबानियां नाल वफादारियां नहीं उसरदियां, मेहरबानियां बंद कर दियो। सब तो वड्डे वफादार सब तो पहला विछड़नगे। व्यापार ते राजनीति विच भी एवें हुंदा है। राजनीति विच लोग जान पछाण तो बिना जफियां पाउंदे ने, दोस्ती तो बिना ही एक दूजे दे वफादार होण दियां सौहां खांदे ने, ते एक दूजे नूं जाणे बिना धोखा दिंदे ने।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से

0: 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब दे व्यापार ते सनत मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई च इन्वेस्ट पंजाब समागम नूं संबोधन कीता। मंत्री ने प्रवासी पंजाबियां समेत यूएई दे कारोबारियां नूं पंजाब विच निवेश करन दा सद्दा दित्ता। पंजाब दे मुख चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने 18 साल दी उम्र दे नौजवानां नूं नवें वोटरां वजो रजिस्टर करन लई अपील कीती। कीनिया दे सिख्या मंत्रालय दे कुछ पदरी वफद ने अज पंजाब ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे मनुखी अधिकार कमीशन दा दौरा कीता। आज तो 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है ते पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ते विश्व दे पहले नंबर दे खिडारन शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज पड़ा 3 च आपो अपने मुकाबलियां विच सोने दे तमगे जीते ने। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब 7 तो 9 सितंबर तक दुबई विच होण वाली सालाना निवेश मीटिंग AIM कांग्रेस विच हिस्सा ले रहा है, जो कि राज विच अंतरराष्ट्रीय निवेश नूं आकर्षित करन दीआं कोशिशां दे हिस्से वजों है। पंजाब दे सनअत ते व्यापार मंत्री अमन अरोड़ा दी अगुवाई विच राज दे वफद ने नीति निर्मातावां निवेशकां ते व्यापारक आगुआं नाल मीटिंगां कीतीआं तां जो राज दे कई खेतरां विच मौकिआं नूं दर्शाया जा सके। श्री अमन अरोड़ा ने AIM कांग्रेस विखे इन्वेस्ट पंजाब समागम नूं संबोधन कीता। दुबई च साडे पत्रकार नाल गल्लबात करदिआं मंत्री ने पंजाब दीआं निवेशकां प्रति सुखावीआं नीतीआं अते निर्माण हल्का इंजीनियरिंग खेतीबाड़ी अते फूड प्रोसैसिंग लॉजिस्टिक टैक्सटाइल साफ सुथरी ऊर्जा IT सेवावां अते उपर टेक्नोलॉजी वर्ग के खेतरां विच मौकिआं ते चानणा पाया।
1: UAE और पंजाब दे विच बहुत सारी सिमिलैरिटीज ने, बहुत सारी समानतावां ने। असीं एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी है, जिहड़ी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी उह लैके आया, जिहदे तहत प्रायोरिटी सैक्टर्स ने और बिजनेस कम्युनिटी उन्हां सैक्टर्स नूं चलाउंदी है और की इशूज ने, पॉलिसीज ने उन्हां दे मुताबिक बणी ने, जिहदे विच चाहे फूड प्रोसैसिंग है, लाइट इंजीनियरिंग है, गारमेंट्स ने, इन्हां सारीआं चीजां दे विच पंजाब सरकार दी पॉलिसी बड़ी प्रोएक्टिव है। और 2 दिनां तों जो साडी मीटिंग चल रही ने अथॉरिटीज दे नाल बड़ी प्रोडक्टिव गल हुई है और मैं समझदा कि आने वाले समय दे विच दोनों जगहों दे विच UAE और पंजाब दे आपस दे विच साडी जो ट्रेड है वह वड्डे पद्धर दे उपर वह एनहांस होएगा।
2: उन्हें कहा कि राज तरजीही खेतरां लई इंसेंटिव की पेशकश करता है, नाल ही इन्वेस्ट पंजाब राही सिंगल विंडो क्लीयरेंस, समामत प्रवानगियां आते समर्पित निवेशक सहूलत भी प्रदान करता है। मंत्री ने प्रवासी पंजाबियों समेत UAE के कारोबारियों नूं पंजाब विच निवेश करने लई सद्दा दित्ता है ते कहा है कि मजबूत संबंध व्यापार नौकरियां ते सप्लाई लड़ियां च वाधा कर सकते ने। पंजाब दे मुख चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने 1 अक्टूबर 2026 नूं जां इस तों पहलां 18 साल दी उम्र प्राप्त कर चुके जां प्राप्त करन वाले उन्हां नौजवानां नूं अपील कीती है कि ओह नवें वोटरां वजों रजिस्टर करन लई फार्म 6 भरन। श्रीमती मित्रा ने सारे नागरिकां नूं भी खरड़ा वोटर सूची विच अपने वेरव्यां दी पुष्टि करन ते 12 सितंबर 2026 जो कि पंजाब विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध 2026 तहत प्रकाशित खरड़ा वोटर सूची संबंधी दावे ते इतराज दायर करन दी आखरी तरीक तक दावे ज इतराज जमा कराउण दी अपील कीती है। इस दे नाल ही कोई भी व्यक्ति जिसका नां 13 अगस्त 2026 नूं प्रकाशित खरड़ा सूची विच पहला ही दिखाई दे रहा है वह एंट्रियां विच सुधार, पता बदलण जां होर वेरव्यां नूं अपडेट करन लई फार्म 8 जमा कर सकता है। नवें वोटर जां सुधार लई अर्जियां भारती चोण कमीशन दी वैबसाइट ECINET ऐप जां संबंधित बूथ पद्धर दे अधिकारियां BLOs राहीं आनलाइन जमा करवाईयां जा सकदियां ने। अंतम वोटर सूची 12 अक्टूबर 2026 नूं प्रकाशित कीती जाएगी। कीनिया दे सिख्या तकनीकी ते किता मुखी सिख्या ते सिखलाई पाठक्रम विकास बारे मंत्रालय दे एक उच्च पदरी वफद ने अज पंजाब ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ते मनुखी अधिकार कमीशन PSHRC दा दौरा कीता। इस दौरे दा उद्देश मनुखी अधिकारां नूं सिख्या, नौजवान हुनर, तकनालोजी ते समर्था निर्माण नाल जोड़न विच भारत दे तजर्बे नूं समझना सी। कीनिया दे मंत्रालय दे मुख कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर किसिलो किंटागे दी अगवाई विच वफद ने कमीशन दे चेयरपर्सन जस्टिस संत प्रकाश नाल मुलाकात कीती अते इस गल ते जोर दित्ता कि सिख्या ते हुनर विकास नूं समानता, गरिमा अते भेदभाव ना करन दे सिद्धांतां ते आधारित होना चाहीदा है। दोवां धिरां ने सिख्या ते हुनर विकास प्रणालियां नूं विकसित करन दी महत्ता नूं पछाणिया जो ना सिर्फ भविख लई तैयार

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर।

0: ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
1: ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
5: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
5: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: कौन बोल रहे हैं? कितों बोल रहे हैं?
1: सुखमन
0: सुखमन बेटा, कितों बोल रहे हो?
1: जी, नगले
0: नगला तलवंडी साबो तो अगले अगले पास है ना।
1: जी, हाँ
0: सुखमन पढ़ते हो बेटा?
1: जी, थैंक
0: सुखमन बहुत बहुत स्वागत तो अड्डा प्रोग्राम श्याम सवानी जी। बेटा
1: यू जी,
0: वेलकम। केड़ी
1: वेलकम
0: केड़ी
1: जी,
0: क्लास च पढ़ते ने सुखमन?
1: मंजिस फोर्थ
0: अच्छा, फोर्थ क्लास। अच्छा ये दसो सुखमन, रुस जाने हो आपदे मम्मा पापा ना कदे?
1: जी।
0: आपदे मम्मा पापा नाल कदे रुस जाने हो? भैन भरावां नाल रुसे हो कदे?
1: नहीं जी,
0: कदे नहीं रुसदे?
1: भैन भरा कोई नहीं है जी।
0: अच्छा, ते फिर मम्मा पापा ना कदे कोई रुसा नहीं करदे?
1: ना जी, गीत
0: अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे ने सुखमन भाई। ते सुखमन गीत कड़ा सुनोगे अजय दसो?
1: राजवीर जोंदे दा।
0: लो फिर, राजवीर जोंदे दा गीत सुखमन तोड़ी नजर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: 131 नंबर डायल करके साडे नाल आ जुड़े ने। हैलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। कौन जनाब, कित्थों गल कर रहे ने?
1: मैं सुखपाल सिंह, नेशनल कॉलोनी बठिंडा तो बोल रहे हैं जी।
0: सुखपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बारी फिर तो तुहाडा प्रोग्राम शाम सवानी च।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: ते पहला तो ये दसो कि रुसदे भी हो, हुण भी रुसदे हो अपणिआं
1: कदे
0: नाल?
1: कदे थोड़ा मोटा हो ही जांदा रुस्सा। हाँ जी,
0: हाँ, और उसे साड़ियाँ मुहब्बतों के रंग होर गूढ़े करते हैं, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठंडे कोसे होंगे ने ते साडे रिश्तियां नू, होर जिहड़ी साडे रिश्तियां दियां तंदां ने उन्हां नू पीड़ियां करते ने,
1: हाँ जी, हाँ
0: पर
1: जी,
0: वो होने हवा दे झोंकिया वर्गे ने ते तरखंभी बदलां वर्गे होने चाहिए ने कि आए ते गए बस, है ना?
1: हाँ। बस थोड़ा चिर ही होंगे, 2-4 मिनट ला लो जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, साडे रिश्तियां दी खूबसूरती नू होर निखारदे ने। सो
1: हाँ
0: गीत
1: जी,
0: कहड़ा सुणोगे सुखपाल जी अज?
1: गीत मैनू सुनाओ जी। तुसी अज सुरिंदर कौर जी का गाया हुआ एक बहुत ही पुराना ते बहुत ही खूबसूरत गीत है,
0: जी
1: नीं उठ वेख नवाने कौन परौना आया।
0: जी हरदेव दलगीर दी कलम दे विचों
1: मैं
0: निकलिया है
1: लिखा हुआ,
0: खूबसूरत
1: हाँ जी,
0: गीत, सुरिंदर कौर दी आवाज़ दे विच तुहाडी नज़र कर रहे हैं। सुखपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: धन्यवाद जी।
0: मेहरबानी।

नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए तो वध दी कुल लागत वाले 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्टां नूं मंजूरी दे दित्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन फैसलों नाल मुसाफरां दी आवाजाई ते संपर्क बेहतर होणगे। भारत ते श्रीलंका ने दोवां देशां दी भलाई लई काम करन वास्ते अपनी वचनबद्धता दी पुष्टि कीती है। माली खुफिया इकाई दे डायरेक्टर ने 15 वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सेवा प्रोवाइडर्स नूं मनी लॉन्डरिंग रोकथाम कानून 2002 दी पालना ना करन करके नोटिस जारी कीते ने। आज तो नौवां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है ते पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ते विश्व दे पहले नंबर दे खिडारन शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज पड़ा 3 च आपो अपने मुकाबलियां विच सोने दे तमगे जीते। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए तो वध दी कुल लागत वाले 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्टां नूं मंजूरी दे दित्ती है। नवी दिल्ली विच मीडिया नूं जानकारी दिंदिया सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल, झारखंड,

0: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 78 379 63 306। ਈਮੇਲ ID ਹੈ AIRFM.BTI@gmail.com। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 78 379 63 306।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: मेरी जिंदगी में खुशियां तेरे बहाने से हैं, मेरी जिंदगी में खुशियां तेरे बहाने से हैं, आधी तुझे सताने से हैं, आधी तुझे मनाने से हैं। जी बिल्कुल, 0164-2240-331 नंबर डायल करके एक श्रोता साढ़े नाल आ जुड़े ने। हैलो,
4: सत श्री अकाल जी, भवेंद्र जी।
3: प्यार भरी सत श्री अकाल जी, आवाज जानी पहचानी पर अपना तारुफ करवा दो श्रोतिया नाल।
4: मैं लक्ष्मण सिंह बोल रहा, पिंड समाल सर, जिला मोगा।
3: जी लक्ष्मण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम शाम सवानी च।
4: थोड़ा भी सुनाओ सर, आंसे धन्यवाद थोड़ा भी।
3: शुक्रिया जी, मेहरबानी। ते अज आपां संखेप जी गलबात कर रहे हां, हल्की फुल्की जी।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: लो जी, प्रोग्राम दे अखीर दे विच एक होर स्रोता 0164 242 3031।

0: प्रोग्राम शाम सुहानी।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम शाम सुहानी FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। साडे स्टूडियो दी घड़ी दे अनुसार रात दे 8:30 होए ने। हुण पेश कर रहे हैं एक प्रयोजित प्रोग्राम उमंग। अज तुसीं इस दी 1368वीं कड़ी सुनोगे। प्रोग्राम दे प्रयोजक ने NCERT नवीं दिल्ली।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको

विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा, पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओ, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा

लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास, भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
4: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली।
6: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
7: अरे हाँ, गाड़ी रुको।
6: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
7: हाँ, अब बन गई रेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
7: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
8: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
7: हाँ, हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
8: चलो
5: रेल चली भाई रेल चली,
8: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ, रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी।
6: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
8: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
6: अच्छा
8: अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
7: दादाजी मैंने देखी है।
8: अरे वाह, ये तो

0: अच्छी बात है।
1: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था, तभी देखी है बस।
0: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी
1: अरे वाह।
0: दिखाऊंगा। यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
1: हाँ, आज
2: आज
1: तुम
2: तुम
1: बड़ा
2: बड़ा
1: मजा आ
2: मजा
1: जाएगा।
2: आएगा।
1: हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे।
3: चलो
1: चलो चलो, जल्दी
3: जल्दी
1: चले।
3: चलो।
1: हाँ।
3: हाँ।
0: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
4: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
0: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी दिखाएंगे।
4: अरे हाँ, दादाजी आओ आओ, बच्चों आ जाओ, बैलगाड़ी में चढ़
0: बैठो
4: जाओ,
0: बैठो,
4: आओ
0: जल्दी
4: आओ।
0: करो,
4: हाँ हाँ
0: जल्दी करो,
1: चलो चलो
0: बैठो
1: चलो
0: बैठो
1: चलो।
0: बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
4: हाँ,
0: हाँ
4: मैं
0: उतरो
4: उतारता
0: उतरो।
4: हूँ। हाँ।
1: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली
0: हाँ
1: जाएगी।
0: हाँ उतरो बेटी।
5: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
1: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
0: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ
1: अच्छा
0: जाने वाले हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
1: दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
0: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
1: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
0: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
1: अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल दी। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
0: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
1: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
3: चलिए।
6: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक

डिब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

वे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग, उमंग। हुणे तुसी सुन रहे सी एक प्रयोजक प्रोग्राम उमंग। अज तुसी इसकी 1368वीं कड़ी सुन रहे सी। प्रोग्राम दे प्रयोजक सन NCERT नवी दिल्ली।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: एक पल बैजा मेरे पास गोरिए जोरा नाल लगी है प्यास गोरिए।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: इस दे नाल ही प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत इत्थे खत्म हुंदा है। देव आग्या नमस्कार।
4: पंच पाणियां दे गीत।
3: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम पंच पाणियां दे गीत FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते, अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 8:44 ते 23 सैकेंड होए ने। हुण तो थोड़ी देर बाद जाने के रात 8:45 ते तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन समाचार संध्या, अते राती 9 बजे तुसी सुनोगे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन न्यूज़ एट 9। खबरां दे इह बुलेटिन असीं रिले करांगे साडे आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। चंद पल करो इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया

0: में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
0: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट से। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2,000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
0: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार देसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिशा नायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
5: आज मेरी हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
1: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की

0: प्रधानमंत्री हरिणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में एनडीआरएफ का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित

0: सीमित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
1: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab el-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals, comprising 4 gold, in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. Indian Eves advance to quarter-final after goalless draw against hosts China. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: उजाली उनकी।
1: ना कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और चित्र गुप्त का संगीतबद्ध किया वासना फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में

चंबल की कसम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया है खयाम ने, और आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: श्रोताओं, आज ही कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और निर्माता अक्षय कुमार पर। भारतीय सिनेमा हर दौर में बदलता आया है और हर दौर की उसकी एक कहानी है। 90 का दशक वो दौर था जब सिनेमा ने रुपेले पर्दे के नए सितारों, उनके एक्टिंग और उनके फन से लोगों को रूबरू कराया। अभिनेता अक्षय कुमार इसी दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऊंची कदकाठी, असरदार डायलॉग डिलीवरी,
1: निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। ताड़े सामने लेके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपया इनाम। सुनो।

कुछ समय बाद अक्षय कुमार के पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई के कोलीवाड़ा आ गए। यहाँ माटुंगा के स्कूल से कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बॉक्सिंग से खासा लगाव होने की वजह से पिता को मनाया, बैंकॉक गए और यहाँ थाई बॉक्सिंग और यहीं मार्शल आर्ट भी सीखी। पैसे कमाना भी जरूरी था, इसलिए बैंकॉक में ही शेफ के काम में लग गए।

0: भारत लौटने के बाद कोलकाता, ढाका और दिल्ली में भी थोड़े दिन तक अलग अलग काम करने के बाद वापस जब उनका मुंबई आना हुआ तो यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया।
1: हम दोनों

अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट के क्लासेस में एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाया और कुमार ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के सहायक के रूप में काम किया। जरूरत के मुताबिक फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करते रहे, जो उनका पैशन भी था। सिलसिला आगे बढ़ा और 1987 में फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में कुमार ने अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और बाद में अक्षय कुमार ये मंच नाम अपनाया। एक ऐसी ही सुबह विज्ञापन शूट के लिए अक्षय कुमार को बेंगलुरु जाना था।

लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट तो मिस हो गई, लेकिन इसी शाम एक फिल्म स्टूडियो में निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार की कदकाठी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म दीदार में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया, जिसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ अनुपम खेर भी नजर आए।

इस फिल्म ने अक्षय कुमार के शुरुआती करियर को आगे बढ़ाया। कुमार की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म सौगंध में बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें चुन लिया गया। इसी वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म डांसर भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा न कर सकी। बाद में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए सफल रही और उनकी भूमिका को भी सराहा गया। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी आयशा जुल्का।

इसी दरमियान राष्ट्रीय द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी, रिलीज हुई। 1993 में केशुराम द्वारा निर्देशित फिल्म अशांत में अक्षय कुमार, डी आर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ नजर आए। फिल्म दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन फिल्म वक्त हमारा है कुछ हद तक कामयाब भी रही। समीर मलकान की फिल्म में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव रॉय की मोहरा, इन दोनों ही फिल्मों ने 1994 में अच्छा प्रदर्शन किया और सफल रही। फिल्म मोहरा में इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के किरदार को एक नई पहचान तो जरूर मिली। रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा ने एक तरह से अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया और अक्षय कुमार का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा।

यश चोपड़ा की फिल्म ये दिल लगी में अभिनेत्री काजोल के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने फिल्मी गलियारों में अक्षय कुमार को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई जिस पर फिल्म के चलने का भरोसा किया जा सकता था। फिल्म सुहाग और ऐलान जैसी कम बजट वाली एक्शन फिल्में भी अक्षय कुमार ने इसी दौरान की और इन्हें भी सफलता मिली। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में उन्होंने की। दोनों का ही निर्देशन उमेश मेहरा ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार का स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अलग था। पोनीटेल, लंबे कोट और खूंखार अंडरटेकर से कुश्ती कर उन्होंने फिल्म में खूब शोहरत पाई।

1997 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है डेविड धवन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी फिल्म थी। इसमें कुमार की जोड़ी जूही चावला के साथ भी पसंद की गई। कमाई के नजरिए से ये फिल्म औसत थी। दोहरी भूमिका वाली फिल्म अफलातून ने एक बार फिर कुमार को सफलता दिलाई। कुछ कमोबेश प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अभिनय किया। प्रीति जिंटा के साथ फिल्म संघर्ष और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जानवर को बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

सन 2000 में रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक फिल्म हेरा फेरी, जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी, कुमार के साथ साथ सुनील शेट्टी के करियर में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन, 2003 में अंदाज, जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया। 2004 में एतराज और मुझसे शादी करोगी। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा फिल्म खाकी में अक्षय कुमार की जोड़ी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या रॉय के साथ एक तरह से कहें तो सफल रही, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी, रवीना टंडन और राज बब्बर के साथ क्राइम फिल्म पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर चर्चित रही। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी अच्छी कमाई वाली फिल्म साबित हुई।

2006 में फिर हेरा फेरी, सिंग स्किंग, 2007 में नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की अन्य फिल्में भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक तरह से। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव एक मनोरोग विशेषज्ञ का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता था। उनके साथ फिल्म में थी विद्या बालन। फिल्म में अक्षय कुमार के मजाहिया किरदार को पसंद किया गया। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म कल्ट फिल्मों में शुमार है श्रोताओ, जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म

खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार ने दोहरी भूमिका निभाते हुए खतरनाक स्टंट्स किए, जो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान पर थे। इनके अलावा भी कुछ और स्टंट्स के लिए फिल्म में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म अजनबी में कुमार नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 2005 में आई फिल्म गर्म मसाला के लिए उन्होंने हास्य भूमिका अदा की और फिल्म फेयर पुरस्कार को अपने नाम किया। वर्ष 2007 की अगर बात करें तो उनकी चार फिल्में लगातार हिट रहीं। 2009 में रोहन सिप्पी के बैनर तले बनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना दीपिका पादुकोण के

वैसे इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रहीं। 2012 राउडी राठौर, 2014 में फिल्म हॉलीडे, 2012 में ही आई फिल्म ओ माय गॉड, 2015 में बेबी, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 में जॉली एलएलबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय की काफी सराहना हुई। 2016 में रिलीज क्राइम थ्रिलर रुस्तम, जिसके निर्देशक थे टीनू सुरेश देसाई, पटकथा विपुल के रावल ने लिखी। अक्षय कुमार ने कमांडर रुस्तम का किरदार अदा किया। इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी का किरदार अदा किया। नौसेना अधिकारी रुस्तम पावरी की भूमिका को काफी सराहना मिली और अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार 2017 में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आए।

ये फिल्म स्वच्छता और खुले में शौच उन्मूलन पर विशेष ध्यान आकर्षित करती थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो अक्षय कुमार की स्वयं निर्मित फिल्म थी। इसके साथ फिल्म पैडमैन भी चर्चाओं में रही। 2019 में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 में एक्शन फिल्म सूर्यवंशी ने मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवसाय किया। 2021 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी काम किया। ATS प्रमुख DCP V सूर्यवंशी

अक्षय कुमार की कुछ और फिल्में जैसे भागम भाग, एनिमेटेड फिल्म जंबो, दे दनादन, कमबख्त इश्क, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म खट्टा मीठा, फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म तीस मार खान, फिल्म पटियाला हाउस, देसी बॉय, सिंग इज ब्लिंग, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने बड़े ही अलग अलग किरदार निभाए। अक्षय कुमार की फिल्मों को देखें तो आज भी उनके द्वारा निभाए गए तमाम किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में जगह पाते हैं। कुमार ने फिल्मी दुनिया में खुद को एक बड़े ही वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार अदा किए और यही वजह है कि अक्षय कुमार की अदायगी को लोग भूल नहीं पाते।

अपने लंबे करियर में कुमार ने स्टंट अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी 4 सीजन तक करी। टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। अक्षय कुमार सामाजिक संस्थाओं के लिए भी बढ़ चढ़कर कार्य करते रहते हैं। कुमार को उच्चतम करदाता सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अक्षय अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। व्यायाम, किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, पार्कौर के संयोजन के साथ खुद को फिट रखते हैं अक्षय कुमार। भारतीय कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स टीम के मालिक भी हैं। फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना उनकी पत्नी हैं।

अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम नितारा है। कुमार को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अजनबी और गरम मसाला के लिए दिए गए। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।

अक्षय कुमार विंडसर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सिनेमा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम श्रोताओं आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार पर। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूं। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरे दो, मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर दो चाहे। मैं भूल चुकी हूं सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूं मैं अब सब, भूल चुकी हूं मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पेय, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूं सब सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूं। अब मैं अपने वश में हूं। हाँ, अब मैं अपने वश में हूं, किसी और के नहीं।

की तरह मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था।